एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार लेके जाएंगे।
1: के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र

0: मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः की 6:05 हुए हैं। चिंतन

सृष्टि का चक्र भी अनोखा है। मनुष्य जन्म लेता है और समय पूरा होने पर शून्य में विलीन हो जाता है। ना जन्म मनुष्य के अधिकार में है और ना ही मृत्यु। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिसके द्वारा वह अपने समय का सदुपयोग कर सकता है, पर संसार में आने के बाद वह मैं और अह के मायाजाल में उलझ जाता है। भगवान ने उसके भीतर जिस स्नेह, प्रेम व सहानुभूति के कण बिखेर दिए हैं, उन्हें भूल वह अभिमानी होता है। वह भूल जाता है कि उसे जो मिला है प्रभु की कृपा से ही मिला है।

भगवान नाम की महिमा अगाध है, अपार है, अमाप है, किंतु जरूरत है तो बस सच्चे हृदय से भगवान नाम लेने की।

हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और उन्हें बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है। वे बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वे संकटों से रक्षा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 147।

मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी प्रसारित किया जाएगा। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का समय रहेगा प्रातः 9:00। 10:00 सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर कार्यक्रम। 11:05 पर कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की प्रसारित किया जाएगा। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा।

दोपहर 12 बजे समय रहेगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा कुछ भजन। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। छह बजकर 5 मिनट पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरमई सांझ में। 6:30 पर कार्यक्रम मौजा ग्रांदिया में बातचीत का विषय रहेगा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास कोष। 7:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 9:15 पर एक ही गायक के क्रम में आज सुनिए गायक सुखविंदर सिंह के गाए कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धाम गीतांदी। और रात्रि 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुने चित्रपट संगीत में। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20, 11:00, 3 बजे, 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9, दोपहर 1:00, शाम 5:00, 7:00 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और दोपहर 1:05, शाम 5:05, 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

तो श्रोताओ, ये थी रूपरेखा हमारी आज की कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को शंकर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम की सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर ही कार्यक्रम सुबह सुहाने के इस अंक के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो रोजाना की ही तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ

रहे हैं शुभ विचार के साथ। श्रोताओ, जीवन में सुख पाने का सबसे सरल तरीका है कम अपेक्षाएं और अधिक आभार। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। जब सोच सुंदर हो जाती है तब दुनिया भी सुंदर दिखाई देने लगती है। सूरज हर दिन बिना थके प्रकाश देता है, इसी तरह हमें भी बिना रुके अपने कर्म करते रहना चाहिए। और कार्यक्रम में अब आपका करेंगे मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे आज के इतिहास के बारे में। श्रोताओं, आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। 14 जुलाई 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजने पर प्रारंभ किए थे। 2003 में आज ही के दिन रूस की येलेना इसिन बायोवा ने महिला पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 14 जुलाई 2008 में वेनेजुएला की डायना मैडोना ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता।

आज ही के दिन 14 जुलाई 1902 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर भारत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का जन्म हुआ। 14 जुलाई 1900 में प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देश बंधु गुप्त का जन्म हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं जानकारी आज के दिन की। श्रोताओं, आज ही के दिन 14 जुलाई 1996 में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का निधन हुआ था। और आज ही के दिन 1975 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन हुआ। श्रोताओ, मदन मोहन हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। गजलों और नज्मों की रूहानी तर्जों के सृजन के लिए अपना लोहा मनवाने वाले इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में ये एक सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद और लता मंगेशकर से

उन्होंने कई यादगार गजलें भी गवाई, जिनमें आपकी नजरों ने समझा फिल्म अनपढ़ से और अगर मुझसे मोहब्बत है जैसी रचनाएं शामिल हैं। इनके मनपसंद गायक मोहम्मद रफी थे। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे की। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में नॉन बाइनरी लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं

के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन लोगों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जिनकी लैंगिक पहचान पारंपरिक पुरुष और महिला के द्वंद्व से बाहर मौजूद है। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको देंगे जानकारी आज के समाचारों की सुर्खियों पर। श्रोताओं, देश की सबसे बड़ी वस्त्र प्रदर्शनी आज से भारत मंडपम में शुरू होने जा रही है। भारत सरकार और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुए रणनीतिक सहयोग और व्यापार समझौते पर आगे की चर्चा जारी है। 15 जुलाई से यूके में भारतीय निर्यात होगा ड्यूटी फ्री और ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक बड़े संघर्ष का रूप ले चुका है। हाल के दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल अब फुटबॉल के दो सबसे बड़े दावेदारों के बीच होने जा रहा है। फ्रांस और स्पेन की टीमें 15 जुलाई को अमेरिका के डलास स्टेडियम में आमने सामने होंगी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देते हैं मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। धर्मशाला के तापमान की अगर बात करें तो धर्मशाला का अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, प्यारे प्यारे गीतों के साथ आज के इस कार्यक्रम में अब एक बार फिर आपका कर रहे हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की

0: भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: Peacekeeping has been a crucial element of
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री

0: गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौष्ठवतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौष्ठवतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। मैं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
8: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो

0: 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला लोकगीत प्रेम सिंह व साथियों की आवाजों में

श्रोताओ, ये लोकगीत आपने सुना राज प्रभाकर की आवाज में। कार्यक्रम का अगला लोकगीत रतन चंद की आवाज में।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का।
1: हेलो धर्मशाला,
2: हेलो धर्मशाला।

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और सुनते हैं अपनी पसंद के गीत। तो आज के इस कार्यक्रम में जो फिल्में हम लेकर आए हैं वो फिल्में आपको बता देते हैं। आज की फिल्में हैं आदमी खिलौना है, चलते चलते, दबंग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कच्चे धागे, लावारिस, मुकंदर का सिकंदर, प्रेम रोग, राजा हिंदुस्तानी और सौदागर। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे और हमारा फ़ोन नंबर तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक बार अपने नए श्रोताओं को फिर से बताना चाहेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391, यानी 01892224391। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप इस नंबर पर फ़ोन करके सुन सकते हैं। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रही हैं?
1: मैं सानिया बोल रही हूँ, पालमपुर से।
0: सानिया
1: जी,
0: क्या करती हैं सानिया आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ 9th क्लास में।
0: अच्छा, और आजकल छुट्टियाँ हैं? चलिए, अच्छी बात है, छुट्टियां बिता रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगी?
1: कौन कौन सी मूवीज बताई मैम आपने?
0: फिल्में हैं आदमी खिलौना है, चलते चलते, दबंग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कच्चे धागे, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, प्रेम रोग, राजा हिंदुस्तानी और सौदागर।
1: कच्चे धागे का
0: कोई सभी सुनेंगे। अच्छा, और छुट्टियां पड़ी हैं तो कहीं घूमने नहीं गए सानी आप?
1: जाना है बस कल अमृतसर के लिए।
0: अमृतसर जा रही हैं? चलिए, अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा उठाइए और

साथ में छुट्टियों का एक फायदा और भी होता है कि आप छुट्टियों में जो आपका सिलेबस करवाया है आपको वो भी कवर करना होता है ना। चलिए घूमिए फिरिए और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो धर्मशाला।
4: हेलो दीदी, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
4: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। और राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुनना है, तेरे इश्क में नाचेंगे, उब क्या रात आई है।
3: भगवान सिंह जी, क्या करते हैं आप?
4: खेती किसानी करते हैं दीदी।
3: अच्छा, और फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहा आपने? चलिए, इनका फ़ोन जो है वो कट गया है। कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी पसंद जो है वो बता दी है हमें, और इनकी पसंद का गीत हम इनको ज़रूर सुनवाएंगे। लेकिन हम ठीक से सुन नहीं पाए कि कौन सी गाना इन्होंने सुनना चाहा था। कोई बात नहीं, इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इनको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा।

0: into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो धर्मशाला।
4: हेलो अनुराधा जी, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आपके?
4: बहुत बढ़िया है जी, बड़े मजे में है। आप सुनाइए, क्या समाचार है?
3: बस बढ़िया है। पहले अपनी पसंद बता दीजिए, फिर अपना नाम भी बता दीजिए, क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन हमारे श्रोता नहीं जान पाए होंगे।
4: चलिए बताता हूँ मैं, फिल्म है लावारिस, उसका कोई भी गीत सुना दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मैतापुर से महेंद्र सिंह राणा
3: जी। बहुत बहुत स्वागत है। और क्या हाल चाल है पंजाब के महेंद्र सिंह जी?
4: देखिए अब बारिश शुरू हुई है, कल तो बस हुई थी, बारिश हुई थी, आज भी बादल छाए हुए हैं, देखिए बारिश होती है कि नहीं है।
3: चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी जी बारिश हो।
4: मौसम बहुत सुहावना हो चुका है
3: और इस सुहावने मौसम में आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
4: ठीक है जी, धन्यवाद।
3: ठीक है जी,
4: नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा प्रातः 9:30 पर भी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सबके बीच।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, गंगा देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक। शिमला में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित, एडीबी को भेजा जाएगा फंडिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक, लोगों की रुचि के अनुसार आमंत्रित होंगे बड़े कलाकार। मंडी जिला में लगातार बढ़ रहा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का दायरा, अभी तक लगभग 1.25 लाख पौधे रोपित। और प्रदेश में अगले कुछ दिन सुस्त रहेगी मॉनसून की रफ्तार, उमस भरी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि गंगा देश के लोगों के लिए एक नदी नहीं, बल्कि देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समय के साथ गंगा का मार्ग और स्वरूप बदलता रहा है, लेकिन अब हमेशा जीवनदायिनी नदी के रूप में हमारी सभ्यता का पालन पोषण करती रही है। राज्यपाल शिमला में प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय कला, लोक परंपरा और संगीत में गंगा का प्रवाह के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगा शाश्वतता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय कला, साहित्य, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में उसका विशेष स्थान रहा है। राज्यपाल ने कहा कि अनेक पीढ़ियों के कवियों, कलाकारों और विद्वानों ने गंगा से प्रेरणा लेकर अपनी रचनाओं को समृद्ध किया है। इसी कारण गंगा भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गई है। शिमला के विधायक हरीश जनार्दन ने कहा है कि शिमला शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से वैकल्पिक सड़कें, फ्लाईओवर और सुरंगें बनाई जाएंगी। जनार्दन शिमला में हिमाचल प्रदेश सड़क व अधोसंरचना विकास निगम द्वारा शिमला शहर में प्रस्तावित दो सुरंग परियोजनाओं के संबंध में आयोजित पहली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। अधिक जानकारी

0: के साथ हमारे शिमला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, जलवायु अनुकूल एवं सुरक्षित संपर्क विकसित करना है और शिमला को लंबे समय तक ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराना है। परियोजना के तहत शिमला शहर के लिए 7 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं प्रस्तावित है। बैठक के दौरान परियोजनाओं की प्रारंभिक रूपरेखा, संभावित लाभ, तकनीकी पहलुओं व निर्माण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इन सुरंगों के निर्माण से शिमला शहर में यातायात जाम की समस्या में कमी आएगी, यात्रा समय घटेगा। इसके अलावा विधानसभा के समीप बन रहा फ्लाईओवर भी दिसंबर 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से भी जाम से काफी निजात मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आयोजन इस वर्ष 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने चंबा में मिंजर मेले को लेकर गठित सांस्कृतिक उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बार प्रशासन ने मिंजर मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाली सांस्कृतिक संध्याओं का स्तर बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की रुचि के अनुसार इस बार ज्यादा अच्छे कलाकारों को किया जाएगा।
2: 26 तारीख से 2 अगस्त तक हमारा मिंजर इंटरनेशनल फेयर ये आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फेयर है तो उसमें वो जो इंटरनेशनल कलर्स है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी परफॉर्मेंसेस हो जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय लगे भी। एक तरफ हम अपने जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको भी इसमें प्रदर्शित करें, और दूसरी तरफ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर फेयर है उसमें भी हम कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस करवाएं। इस विषय पे चर्चा
0: राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य में सतत कृषि को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई है। शिमला में नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बैंक के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4,213 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त वितरण किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.3% अधिक है। विवेक पठानिया ने बताया कि नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 पारंपरिक उत्पादों रणसिंघा, हिमाचली गलीचा और हिमाचल वुड क्राफ्ट के GI पंजीकरण में सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि GI टैग प्राप्त चंबा चप्पल की बाजार संभावनाओं का विस्तार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि आम लोगों का उत्थान और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने कई प्रभावी योजनाएं आरंभ की हैं और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कड़े फैसले लिए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू सोमवार को हमीरपुर की ग्राम पंचायत सहानवी में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इंदिरा गांधी शिक्षा योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, प्राकृतिक खेती से तैयार फलों के लिए अलग से उच्च दाम निर्धारित करना और दूध के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि सहित कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका सीधा लाभ आम लोगों को हो रहा है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए हैं और विभिन्न बिजली प्रोजेक्टों से राज्य को अरबों रुपये का राजस्व प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का मंडी जिला में दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में इस योजना के तहत अभी तक 121 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाया जा चुका है और 74 महिला व युवक मंडल इस वर्ष 1,22,000 से अधिक पौधे रोपित कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडल जिला संवाददाता।
3: बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना मंडी जिला में पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण आजीविका को भी नई दिशा दे रही है। योजना के तहत अब पौधारोपण और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय महिला मंडलों और युवक मंडलों को सौंपी जा रही है, जिससे पर्यावरण बचाने के साथ साथ गाँव में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। मंडी वन मंडल के वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महिला और युवक मंडलों को भागीदारी से 20 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,000 पौधे लगाए गए। इस कार्य के लिए वन विभाग प्रति हेक्टेयर 1,20,000 की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पूरे वन वृत्त मंडी में अब तक 121 हेक्टेयर क्षेत्र के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 102 हेक्टेयर के पौधारोपण हो चुका है और 74 महिला एवं युवक मंडलों को 1,22,000 से अधिक पौधे भी

0: किए गए हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
1: भारत की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। ये आयोजन निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाएगा। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश में अपनी आंतरिक संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया आरंभ कर दी है। संगठन के चुनाव समन्वयक विवेक गिरी ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि संगठनात्मक चुनाव एनएसयूआई संविधान के अनुरूप संपन्न होंगे। इस चुनाव प्रक्रिया का उद्देश्य संगठन को प्रत्येक स्तर पर सशक्त बनाना, निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में संगठन अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। विवेक गिरी ने कहा कि संगठनात्मक चुनाव का पहला चरण 24 जुलाई से जबकि दूसरा चरण 7 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मॉनसून की रफ्तार धीमी रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में मॉनसून में फिर से तेजी आने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है और अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ बना हुआ है। इससे राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज से 17 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, बाबा बालकनाथ मंदिर में चढ़ावे की 99 ग्राम चांदी कर दी गायब, विभागीय ऑडिट में खुलासा। हिमाचल दस्तक और दिव्य हिमाचल ने बीबीएमबी में हिमाचल के लंबित हिस्से को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को लगभग एक जैसी सुर्खी दी है, सुक्खू सरकार के बीबीएमबी एरियर को वापस लेने की प्रयास तेज। दैनिक जागरण की एक खबर है, सुक्खू बोले गलतफहमी में ना रहे भाजपा, दोबारा हम ही आएंगे सत्ता में। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है, शौंगटोंग करछम परियोजना मार्च से होगी शुरू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, गंगा देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक। शिमला में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 2200 करोड़ की योजना प्रस्तावित, एडीबी को भेजा जाएगा फंडिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक, लोगों की रुचि के अनुसार आमंत्रित होंगे बड़े कलाकार। मंडी जिले में लगातार बढ़ रहा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का दायरा, अभी तक लगभग 1.25 लाख पौधे रोपित। और प्रदेश में अगले कुछ दिन सुस्त रहेगी मॉनसून की रफ्तार, उमस भरी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन हमारा सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का शेष भाग। और कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीत अब इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं वो फिल्में हैं आदमी खिलौना है, चलते चलते, दबंग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुकद्दर का सिकंदर, प्रेम रोग और सौदागर। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको मिलाना है हमारे आकाशवाणी धर्मशाला का नंबर जो है 01892224391, यानी 01892224391। हेलो धर्मशाला
5: जी। नमस्ते।
4: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
5: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा।

0: जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह जी, पहले तो अपनी पसंद बताइए।
0: दिल वाले का सुनवा दीजिएगा, जीता था जिसके लिए।
1: ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म है,
0: जी, तो दिल वाले दुल्हनिया का सुनवा दीजिएगा फिर आप।
1: कौन सा गीत? कोई भी,
0: हाँ
1: चलिए इनकी पसंद हमने जान ली है, कोई बात नहीं। इनका नंबर जो है वो कट गया है, तो इनकी पसंद का गीत हम इनको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो धर्मशाला।
4: हेलो बहन जी, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
4: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
3: जगदीश जी, पहले तो अपनी पसंद बताइए, कौन सा गाना जो है वो आज सुनना चाहेंगे?
4: बहन जी, फिल्म प्रेम रोग का कोई भी गीत सुना देना।
3: अच्छा, और करते क्या है जगदीश जी आप?
4: बहन जी, मैं तो वैसे अब रिटायर हो चुका हूँ, बस सेवा मुक्त हूँ। अपना बेटे के पास बैठता हूँ, उसका हॉस्पिटल है आँखों का।
3: अच्छा, और वहाँ पे खाली जब होते हैं तो वहाँ बैठते हैं ना?
4: बस रेडियो वगैरह सुनते रहते।
3: चलिए, अच्छी बात है, रेडियो सुनिए और आकाशवाणी धर्मशाला के भी कार्यक्रम सुनते रहते होंगे, है ना?
4: हाँ जी, बिल्कुल सुनते रहते हैं।
3: चलिए, अब सुनेगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
4: धन्यवाद बहन, धन्यवाद, शुक्रिया।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जगदीश चंद बोल रहे हैं। मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुना दो।
0: कौन सा?
1: मुकद्दर का सिकंदर।
0: कौन सा गाना सुनेंगे इस फिल्म का?
1: कौन सा सुना दो, सभी अच्छे।
0: ठीक है, आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।
0: ठीक है जी।

0: Room your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो धर्मशाला।
4: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जल्दी से बताइए मैडम, कौन सा फिल्म का है?
3: अच्छा, फिल्में हैं आदमी खिलौना है, चलते चलते, दबंग और सौदागर।
4: चलते चलते पुराना वाला है ना, वो प्यार में कभी
3: नहीं, नहीं, नहीं नया वाला है
4: दबंग। तो दबंग का सुना दीजिएगा।
3: कौन सा गीत?
4: कोई भी गीत सुना दीजिएगा, बढ़िया वाला गीत।
3: और करते क्या है आप?
4: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ।
3: अच्छा, और साथ में यहाँ के कार्यक्रम भी सुने जाते हैं।
4: जी मैडम, सुने जाता हूँ। ऐसे इसी में है गाना है ना मैडम?
3: हाँ जी,
4: दबंग में है, दबंग मुन्नी बदनाम हो, इसी में गाना है का?
3: हाँ जी, इसी में है।
4: हाँ, तो उसी को सुना दीजिएगा।
3: चलिए ठीक है, आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार मैडम, मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: अशोक सिंह।
0: अशोक जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे पहले तो ये बताइए।
1: कौन सी पिक्चर है? दिलवाले दुल्हनिया लावारिस,
0: आदमी खिलौना है, चलते चलते और सौदागर।
1: आदमी खिलौना है का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: चलिए, और क्या करते हैं आप?
1: मैं रिटायरमेंट हूँ, बस रेडियो का दीवाना 75।
0: चलिए अच्छी बात है, रेडियो सुनते रहते हैं, है ना?
1: जी 3 साल हो गए रिटायरमेंट।
0: ठीक है, तो अब सुनिएगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है जी।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। और चलने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विपिन कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। अब दीजिए अपने दोस्त अनुराधा को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: हेलो धर्मशाला,
1: हेलो धर्मशाला। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां का।

गीतों का कारवां कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। ये खूबसूरत सा संगीत है उत्तम सिंह का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल जले से खूबसूरत सा गीत। यह आवाज है कुमार सानू की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और गीत के लिए संगीत दिया है अनु मलिक ने।

इंदिवर की रचना को भप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हिम्मत वाला से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना से ये गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार सानू। ये खूबसूरत सा संगीत है जतिन ललित का। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति विमला राठौड़ की आवाज में।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अजय कुमार की आवाज में ये लोकगीत।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति अतुल शर्मा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि गंगा देश के लोगों के लिए एक नदी नहीं बल्कि देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समय के साथ गंगा का मार्ग और स्वरूप बदलता रहा है, लेकिन वह हमेशा जीवनदायिनी नदी के रूप में हमारी सभ्यता का पालन पोषण करती रही है। राज्यपाल शिमला में प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय कला, लोक परंपरा और संगीत में गंगा का प्रवाह के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गंगा शाश्वतता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय कला, साहित्य, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में उसका विशेष स्थान रहा है। राज्यपाल ने कहा कि अनेक पीढ़ियों के कवियों, कलाकारों और विद्वानों ने गंगा से प्रेरणा लेकर अपनी रचनाओं को समृद्ध किया है। इसी कारण गंगा भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गई है। शिमला के विधायक हरीश जनार्थन ने कहा कि शिमला शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से वैकल्पिक सड़कें, फ्लाईओवर और सुरंगें बनाई जाएंगी। जनार्थन शिमला में हिमाचल प्रदेश सड़क व अधोसंरचना विकास निगम द्वारा शिमला शहर में प्रस्तावित दो सुरंग परियोजनाओं के संबंध में आयोजित पहली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विभाग के दैनिक भोगियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने विभाग में 8 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक भोगियों को वर्क चार्ज स्टेटस देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश जिला जियालाल भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि विभाग में वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का ना होना कर्मचारियों को उनके कानूनी हक से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। विभाग के दैनिक भोगी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि नियमित होने से पहले उन्हें दैनिक भोगी के रूप में सेवा के 8 से 10 वर्ष पूरा होने पर वर्क चार्ज स्टेटस दिया जाए। विभाग ने पहले कर्मचारियों की इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि कृषि विभाग में कोई वर्क चार्ज संस्थान नहीं है। चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आयोजन इस वर्ष 26 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा। मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने चंबा में मिंजर मेले को लेकर गठित सांस्कृतिक उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बार प्रशासन ने मिंजर मेले का मुख्य आकर्षण रहने वाली सांस्कृतिक संध्याओं का स्तर बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की रुचि के अनुसार इस बार ज्यादा अच्छे कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा।
1: 26 तारीख से 2 अगस्त तक हमारा मिंजर इंटरनेशनल फेयर ये आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फेयर है तो उसमें वो जो इंटरनेशनल कलर्स है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी परफॉर्मेंसेस हो जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय लगे भी। एक तरफ हम अपने जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको भी इसमें प्रदर्शित करें, और दूसरी तरफ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर फेयर है उसमें भी हम कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस करवाएं। इस विषय पे चर्चा
0: बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा है कि युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खेल गतिविधियों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उपायुक्त ने बिलासपुर के लुहणू स्थित खेल परिसर में नवीनीकृत प्रिवेंटिव हेल्थ फिटनेस सेंटर और जिम्नेजियम के उद्घाटन अवसर पर कहा कि बिलासपुर जिले में चिट्टे जैसे बढ़ते नशे के प्रभाव को रोकने के लिए युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फिटनेस सेंटर और जिम्नेजियम जैसे बुनियादी ढांचे युवाओं को अपना समय सकारात्मक गतिविधियों में लगाने का अवसर देंगे। इससे वे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और नशे जैसी सामाजिक बुराई से भी दूर रहेंगे। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मॉनसून की रफ्तार धीमी रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार 18 जुलाई से प्रदेश में मॉनसून में फिर से तेजी आने की संभावना है।

0: इस बीच प्रदेश में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है और अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ बना हुआ है। इससे राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज से 17 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति निम्मो चौधरी की आवाज में।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लहरू राम सांख्यान की आवाज में ये लोक गीत। लची लची लो।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ

0: एक भारी मिट्टी की पटिया हो तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पटियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
0: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
0: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
0: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।

0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
6: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
2: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी

0: अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लू। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी

0: नहीं भाई, साथ ही नहीं, उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
1: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुन

0: सुंदर मोर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।
7: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
8: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
9: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर ही फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गाए फिल्म बड़े दिल वाले के इस गीत के साथ।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म बाबू का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

0: मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं। जैसा सके जिंदगी हमारी सोच से भी बहुत छोटी है, इसलिए इसे किसी बैर भाव या गिले शिकवों में ना बिताएं, बल्कि जो आपके दिल में है उसे खुलकर करें और खुशी और जिंदा दिली के साथ जिए। तो ये खूबसूरत सी पंक्तियाँ थी आप सब खूबसूरत सखियों के लिए, और इन्हीं के साथ स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, आज मैं हूँ आपके साथ आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना, और आप सभी श्रोता सखियों को रीना का प्यार भरा नमस्कार। तो मंगलवार के इस खूबसूरत अंक में जुड़िए हमारे साथ, और बातें तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत उन फिल्मों से जिन्हें हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बात करने के लिए और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आपको डायल करना है हमारे स्टूडियो का नंबर जो है 01892224391। जी हाँ, 01892224391। और आज की जो हमारी चुनिंदा फिल्में हैं, जल्दी से आप उनके नाम भी नोट कर लें ताकि आप अपनी फरमाइश इसके अनुसार कर सकें। तो फिल्में हैं हमराज, हम आपके हैं कौन, जब तक है जान, क्रांति, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मन, मोहब्बतें, मिस्टर इंडिया, नाम और तुम बिन। तो बहुत ही खूबसूरत सी फिल्में हैं सखियों, और गीत भी इनके बहुत ही सुंदर हैं। तो जल्दी से मिलाएं स्टूडियो का नंबर और देखते हैं हमारी पहली कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो। तो सखियां ट्राई तो काफ़ी देर से कर रही हैं, और यही कहूँगी कि जब भी आप कॉल करें तो सिग्नल का ध्यान रखें ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो वही फोन करें। हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते मैडम जी, मैं साक्षी बोल रही हूँ।
0: जी साक्षी, आपको पहचान लिया हमने, क्या कहना चाहती हैं आज?
1: ठीक है मैडम जी, आप?
0: हाँ जी, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है। आपके यहाँ किस तरह का मौसम है?
1: हमारे बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छा है
1: जी।
0: तो किस तरह मज़ा ले रही है मौसम का?
1: कुछ नहीं, अंदर बैठ के आपसे बात करने का इंतजार होता है, कर रही हूँ बात।
0: अच्छा जी, हमें भी बहुत इंतजार रहता है अपने श्रोताओं से बात करने के लिए। और साक्षी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं
1: आप? कौन कौन सी फिल्म रखे, नाम का सुना दीजिए।
0: नाम फिल्म का?
1: हाँ जी।
0: कौन सा गीत?
1: अच्छा सर, मैं पिछले थोड़ी काम में देखती हूँ ना, मेरे को पता नहीं होता कौन कौन पिछले, ऐसे गाना सुनना तो एक बहाना होता आपसे बात करने का
0: जी। और हमारे पास भी बहुत ही बातें होती हैं आपके साथ करने के लिए, है ना साक्षी? तो आपकी पसंद की फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर है, साथ में सुनते हैं। और जी बिल्कुल, धर्मशाला में भी आप जरूर आइए साक्षी, और सुनिए अभी अपनी।
1: कब मेरा आना होगा, जो मैंने आपसे कब मिलना, कब नहीं मिलने का मेरा बड़ा मन है आपसे बात करने का।
0: जी जी साक्षी, जरूर हम जरूर मिलेंगे हम, पहले अपनी पसंद का गीत सुनिए, है ना? और शुक्रिया फोन करने के लिए साक्षी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: कैसे हो?
0: जी बढ़िया है, आप बताइए।
1: यस मैम, बढ़िया।
0: नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं।
1: मैम शिवानी बोल रही हूँ, मैं डाटा से बात है। मैम
0: शिवानी कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ आप?
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। और डाडा सिबा का क्या हाल चाल है, मौसम किस तरह का है?
1: गर्मी बहुत है। हाँ
0: गर्मी बहुत है।
1: जी, बारिश नहीं हो रही ना?
0: इस बार बारिशें कम ही हो रही है ना।
1: हाँ जी,
0: और शिवानी अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं कुछ नहीं, बस देखी, मैं भी काम कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपका रेडियो सुन रही हूँ।
0: आपका नहीं है रेडियो?
1: हाँ मैम, सबका
0: जी हमारा रेडियो है ना।
1: है। हाँ जी,
0: बिल्कुल। और किस तरह के लगते हैं कार्यक्रम,
1: हाँ जी मैम, अच्छे लगते हैं
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: मैम, सभी सभी
0: सभी।
1: सुनती हूँ मैं। जी
0: तो बताइए शिवानी, आज फोन किया है आपने, कौन सी फिल्म का गीत
1: मैम,
0: सुनेंगी?
1: मोहब्बते मूवी का कोई
0: मोहब्बते फिल्म का कौन सा गीत? कोई सा भी
1: सा नहीं, जो
0: जी।
1: आपको पसंद हो।
0: नहीं तो फरमाइशी तो आपके लिए है ना ये कार्यक्रम, आपकी पसंद
1: मोहब्बते मेरे को सभी सॉन्ग पसंद है,
0: सभी।
1: तो जो
0: हाँ सब
1: आपको अच्छा लगता है आप वो कर दो।
0: ठीक है। आपको सुनवा रहे इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: हाँ।

0: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। कार्यक्रम सुनो सखी में आपका स्वागत है
1: मैम धन्यवाद। और बताइए कैसे हो आप?
0: जी। बहुत बढ़िया है, आप बताइए आप किस तरह से हैं
1: मैं हम भी बहुत बढ़िया। आपसे बात करके तो और ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल। और क्या
1: वैसे
0: कुछ
1: एनर्जी मिल जाती है ना कोई ड्रिंक के शरीर में।
0: अच्छा,
1: वैसी
0: आप
1: बात
0: फिर पूरा हफ्ता एनर्जी नहीं रहती आपको
1: मैम, ये सोच लो कि आपसे बात करके पूरा हफ्ता एनर्जी रहती है। जब ट्यूसडे आता है तो फिर एनर्जी को थोड़ा बढ़ाना भी पड़ता है
0: जी
1: ना।
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ
0: बहुत अच्छी बात है। और एनर्जेटिक ही हमें रहना चाहिए, है ना
1: जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम।
0: जी। और हम महिलाओं की अगर हम बात करें तो भाई थकी थकी सी रहती हैं, घर के वही काम वही रूटीन रहती है। तो अच्छा है ना,
1: वो तो
0: रेडियो का
1: है
0: साथ
1: मैम,
0: रहता है।
1: रेडियो तो
0: अच्छा
1: मैम बड़ा जरूरी है। ये बोलो कि खाना चाहे एक टाइम का भूल जाओ
0: अच्छा नहीं,
1: पर
0: खाना भी
1: रेडियो नहीं सुनना
0: रेडियो के साथ साथ
1: चाहिए।
0: खाना भी ज़रूरी है
1: हाँ जी, वो तो है, ये तो चलता रहता है मैम। जब तक
0: जी।
1: प्रोग्राम आपके चलते हैं ये तो कंटिन्यू दिन रात,
0: जी
1: बेचारा थक जाता है कि मुझे चला चला के थका
0: जी
1: दिया।
0: बिल्कुल। इसलिए तो बीच बीच में मतलब ब्रेक भी तो होता है ना, जरा रात को
1: हाँ
0: बंद होता
1: जी
0: है,
1: हाँ जी, हाँ जी, वो तो है मैम। थोड़ा इसको भी एनर्जी चाहिए थोड़ी
0: एनर्जी
1: चार्ज होने
0: चाहिए
1: के
0: चार्ज होने के लिए।
1: लिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की।
1: हाँ
0: पर इतनी अच्छी अच्छी
1: जी,
0: खूबसूरत सी आप बातें कर रहे हैं, मुझे तो चलिए नाम पता है आपका, हमारे श्रोताओं को
1: हाँ
0: बता
1: जी
0: दीजिए
1: मैम, अब तो मैम हमारी सखियों को भी मेरा नाम पता चल गया होगा कि
0: जी
1: जब भी
0: हाँ
1: रीना मैम आती हैं तो इसका फोन तो जरूर ही आता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, पर फिर भी बता दीजिए
1: मैं इंदु बात कर रही हूँ इंदौरा से।
0: जी। इंदु जी, तो आज कौन सी फरमाइश रख रही हैं फिर?
1: मैम तुम बिन पिक्चर का सुना दीजिए, छोटी छोटी रातें।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत है ना
1: हाँ जी मैम, आप भी
0: वैसे
1: सुनिए साथ में।
0: जी जी बिल्कुल, हम भी
1: हाँ
0: सुन रहे हैं और सखियों को, श्रोताओं को भी सुनवा रहे हैं।
1: जी मैम,
0: ठीक है
1: बिल्कुल।
0: इंदु, यूं ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: जी हाँ सखियो, सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी आप सुन रही हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो सखी रीना के साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: कैसे हो? पहले नाम बाद में बताती हूँ।
0: बहुत बढ़िया है, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: बस बढ़िया मैम, काम चल रहा है घर का ही।
0: अच्छा जी,
1: खत्म नहीं हो
0: रहा, खत्म ही नहीं हो रहा सच में, है ना? बहुत समय हो गया।
1: मैम क्या बोलते, नाम मेरा अंजू है।
0: जी जी बिल्कुल अंजू जी, और डाड के क्या हाल चाल है आपके?
1: बस बढ़िया मैम, बढ़िया। धूप लगी हुई है, बारिश होनी रही है।
0: बिल्कुल, बारिशें बहुत कम हो रही है इस बार।
1: बहुत कम बताइए
0: जी,
1: शायद नेक्स्ट मंथ में होगी।
0: तो इस मौसम में क्या कर रही हैं?
1: मैं चावल साफ कर रही थी मैम, मेरे भूल गई थी, एकदम से याद आया।
0: अच्छा, तो सुन रही नहीं रही आज कार्यक्रम?
1: नहीं, फिर मैंने जल्दी से रेडियो ऑन किया और मैंने ऐसे फोन लगाया, मैंने लगता तो ठीक है, नहीं लगता तो फिर।
0: वाह क्या बात है, और फोन लग गया आपका।
1: जी हाँ जी
0: जी। और अंजू कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं फिर आज?
1: नहीं, फिल्में मैंने नहीं सुनी, प्लीज फिल्में बता।
0: जी जी, फिल्में हैं मिस्टर इंडिया, मन, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, क्रांति, जब तक है जान, हम आपके हैं कौन और हमराज।
1: हम आपके हैं कौन का सुना दो, कोई अच्छा सा।
0: कोई भी अच्छा सा? सभी गीत बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कौन सा सुनेंगे। कौन सा?
1: सारे अच्छे सुना दो, कोई भी जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद।
0: नहीं आज ऐसे ही क्यों कह रहे हैं सभी सखियां, आप बताइए आपकी पसंद, क्योंकि सभी गीत बहुत अच्छे हैं, है ना?
1: हाँ जी, सुना दो आप, क्योंकि अभी सोचने में टाइम लगेगा ना।
0: चलिए ठीक है, तो मौसम की बात आप कर रहे हैं और इसी पर ये गीत सुनवाते हैं, और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start.

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, प्यारी सी आवाज़ किसकी है?
1: मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ
0: जी मीनाक्षी
1: अगट्टी से। बस
0: जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैम, आप सुनाओ।
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं, सुना ही रहे हैं।
1: हाँ जी मैम बिल्कुल।
0: जी, और समलोटी के क्या हाल चाल हैं? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है आपके
1: हाँ
0: समलोटी, है ना?
1: जी, अब तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, वो धान लग गया ना।
0: हाँ, तभी कह रही थी
1: हाँ जी मैम,
0: जी। और
1: और
0: आपका?
1: थोड़ी सी बारिश हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो
0: अच्छा,
1: जाएगा।
0: बस जी। और बरसात का मौसम इस तरह का होता है, जब बारिश होती है तो बहुत ही साफ सुथरा मौसम लगता है।
1: हाँ जी, साफ
0: और बताइए मीनाक्षी, क्या
1: सुथरा होता भी है और नहीं भी होता
0: जी
1: है।
0: बाद में गंदा लगता है?
1: हाँ
0: गंदा
1: जी
0: भी इसी मौसम में लगता है और साफ
1: हाँ
0: भी।
1: जी, साफ भी। हाँ जी
0: जी जी
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल। और मीनाक्षी बताइए, क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे सखियों के साथ?
1: सखियों के साथ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे भी घर से निकले तो ये बारिश का मौसम है तो छाता जरूर डाल के निकले।
0: जी, ऐसा ना
1: हाँ
0: सोचे
1: जी,
0: धूप है ना, क्योंकि आज
1: धूप है। हाँ जी, क्योंकि पल में मौसम जो है अपना मिजाज बदल लेता है।
0: बरसात में जहां बादल वहीं बारिश।
1: वही बारिश। हाँ जी,
0: जी बहुत
1: पर अब की
0: अच्छा।
1: बार ये कहावत झूठी पड़ रही
0: जी हाँ, मौसम विभाग भी का भी थोड़ा गलत हो रहा है अंदाजा, है ना?
1: ना। हाँ जी, अब की बार। हाँ जी बिल्कुल।
0: चलिए देखते हैं कब तक हमें तरस आती है बारिश इस बार।
1: हाँ जी, तरसा दी है मैम, धर्मशाला में तो हो रही होगी।
0: जी, बीच बीच में हो रही है।
1: हाँ जी
0: और
1: मैम।
0: मीनाक्षी, क्या फरमाइश है फिर आज आपकी?
1: मैम मन फिल्म का वो मेरा मन जो तुम्हें चाहिए।
0: ठीक है, टाइटल ट्रैक आप सुनना चाहती हैं?
1: हाँ जी मैम।
0: तो मीनाक्षी, आपकी पसंद हम जरूर पूरी करेंगे, लेकिन कुछ संदेश हैं उसके बाद।
1: ओके मैम,
0: शुक्रिया फोन
1: धन्यवाद।
0: करने के लिए।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल,
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दी,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
7: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जाँच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जाँच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जाँच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
8: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात?
1: हेलो,
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं दर्शना कुमारी बात कर रही हूँ मानसर से।
0: जी दर्शना जी, फरमाइश बता दीजिए जल्दी से।
1: हमराज फिल्म का बता सुना दो मैं।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश कर रहे हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैडम।

जैसे कि 30 मिनट का ये खूबसूरत सा सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप सबकी खूबसूरत बातें और फरमाइश हम इस कार्यक्रम में पूरी करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थी हमारे आज के इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश।

0: इसी गीत के साथ सखियो अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते चलते आपको बता दें इस कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह। प्यारी सखियों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को

0: तोड़ा जाए।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021. Through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India's largest global textile event, Bharat Text 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh today inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Text is the vision of the Prime Minister Narendra Modi. He said it is now an international event

अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय ये परिस्थितियाँ कैसे कटेंगी कैसे बदलेंगी क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप हमें बता सकते हैं? या कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं? इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गज़ल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के

लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्धतय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और सबसे मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

क्या कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायासी, इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत, मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था, समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर

में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुक कर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज़ में संगीत नहीं रहता, मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज़ में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं, इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ें हैं इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है, लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्रायः ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है, संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों के पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर, कुछ भी हो संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाज़ें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहाँ सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत ज़रूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं। कंफ्यूज था, उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोक गीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। धुनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी की हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जबकि किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार घुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हों तो वह संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं ना कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत

हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार, इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखी थे। रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं, बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं, हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूँगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गज़ल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोज़ाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज़।

से सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को

0: निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारे

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुँचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे

0: वादाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @यायार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये है नौ निहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के एमओयू के प्रारूप की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा सुनिश्चित कर राज्य सरकार इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में 422 मेगावाट किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति बनी है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई वित्तीय निवेश किए बिना प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। 422 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के लिए औपचारिक एमओयू हस्ताक्षरित होने से पूर्व भारत सरकार ने एमओयू का प्रारूप साझेदार राज्यों को भेजकर इस पर सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पूर्व के समझौते के प्रारूप को अस्वीकृत किया और प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखते हुए राज्य सरकार ने प्रस्तावित शर्तों और प्रावधानों के लिए सभी हितधारकों से स्वीकृति प्रदान करवाई। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है और अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। उन्होंने कहा कि हर साल इस आयोजन में प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। गिरिराज सिंह ने बताया कि इस वर्ष इस कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से एफटीए हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है, इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं।

0: उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऊना जिला के हरोली क्षेत्र में पंचायत सामुदायिक केंद्र भैनीखड के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में गठित 6 नई पंचायतों में भी जल्द पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा ताकि विकास कार्यों के संचालन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र के पैसों से हो रहे बिजली सुधार कार्यों का श्रेय लेने में जुटी है। नाहन से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र की RDSS योजना के तहत 194,42,00,000 रुपये की परियोजना पर कार्य चल रहा है। राजीव बिंदल ने कहा कि इस परियोजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र में 86,75,00,000, पांवटा साहिब में 75,50,00,000 और राजगढ़ क्षेत्र में 37,17,00,000 रुपये की लागत से बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने RDSS योजना के तहत हिमाचल को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
2: जिला सिरमौर के लिए RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 194.42 करोड़ की स्कीम चल और सिरमौर जिला में जितने काम बिजली के चल उसमें 194.42 करोड़ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत ये काम हो रहा है। कांग्रेस की ओर से ये बयान दिया कि बिजली के अंदर प्रदेश सरकार के एफर्ट्स के साथ ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो ये बात बीच में नहीं कही कि ये जितनी राशि आई है ये 100% केंद्र सरकार की देन है।
1: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने के लिए समाधान समारोह यानी विशेष लोक अदालत 2026 के लिए इच्छुक पक्षकार 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कांगड़ा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण धर्मशाला के सचिव आर मेहुल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह व मध्यस्थता से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के उद्देश्य से 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में समाधान समारोह का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है सामयिक चर्चा, जिसका विषय है विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता ग्रामीण भारत। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
4: भारत की लगभग 2/3 आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बने। यही कारण है कि हाल के वर्षों में ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर अनेक पहलें की गई हैं, जिनका उद्देश्य गांवों में बेहतर जीवन स्तर, अधिक रोजगार के अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ग्रामीण विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक सड़क संपर्क बढ़ा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार को नई गति मिली है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा और सम्मान दोनों बढ़े हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रोन, बेहतर बीज, सूक्ष्म सिंचाई और प्राकृतिक खेती जैसी नई विधियों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी भी विकास की एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं स्वरोजगार, लघु उद्योग और स्थानीय उत्पादों

0: के विपणन से जुड़ रही हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि वे अपने परिवार और समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल क्रांति ने भी ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है। आज गांवों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। किसान ऑनलाइन कृषि सलाह प्राप्त कर रहे हैं, छात्र डिजिटल शिक्षा से जुड़ रहे हैं और आम नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा रहे हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन देन को अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक उद्योगों और सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल ही में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जैसे प्रयासों का उद्देश्य भी ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त बनाना है। इससे पलायन कम करने और गांवों में ही रोजगार के नए अवसर विकसित करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने में सरकार, स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और ग्रामीण समुदाय की साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत केवल शहरों के विकास से नहीं बनेगा, बल्कि उसका वास्तविक आधार सशक्त और आत्मनिर्भर गाँव होंगे। जब हर गाँव में बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल सुविधाएं और जनक आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे, तब विकसित भारत का संकल्प और अधिक मजबूत होगा। ग्रामीण भारत का यह परिवर्तन केवल सरकारी योजनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि जनभागीदारी, नवाचार और सामूहिक प्रयासों की भी कहानी है। यही प्रयास भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे।
1: राजकुमारी चंदेल से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, जिसका विषय था विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ता ग्रामीण भारत। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 103.4 MHz पर। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: मोबाइल पर होती हैं और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
4: अपना मोबाइल चेक करते हैं। हाँ। किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है।
3: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता है अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
3: बिल्कुल,
4: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कॉन्टैक्ट, जैसे किसी से नज़र मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नज़रें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
3: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
4: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
3: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
4: चलिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
7: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं।
6: हाँ।
7: जो वो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
6: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं।

0: हैं तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहाँ। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज। और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वॉयलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खास तौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठ कर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक हैं और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं

0: जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं, वो मोबीक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज ऐप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीज़ों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबीक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: मंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई, तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज़्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी। और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती हैं ना वो सभी चीज़ें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहाँ काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती हैं खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के

0: आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
1: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022 इसकी हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी, जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
0: बिल्कुल।

0: तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं।

0: हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
1: इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
0: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं, यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है लेकिन इसके जब मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
1: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम ज़रूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहाँ भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
1: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
0: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ हैं कि नहीं, बनाने के तरीके साफ हैं कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
0: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियाँ बहुत हैं, तो मक्खियाँ जब खाने पर बैठती हैं तो वहाँ अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
1: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीज़ों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
0: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीज़ें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बहुत ताज़ा आपको भोजन खाने को मिलता है।
0: एक और बात कि तली हुई चीज़ें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीज़ों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताज़ा तेल

0: उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहरी खाना पसंद करती है, और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये जो पिज़्ज़ा, हाँ, बर्गर, ये चीज़ें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है, और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है,
1: और बच्चे इन चीज़ों, हाँ, से बड़े आकर्षित होते हैं। लेकिन बहुत सारी मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाज़ार में मोमोज बनते हैं ना, वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियाँ उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती हैं, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फ़ायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रही थी कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाएं, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और
0: वही।
1: ये एक
0: हाँ
1: ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण इन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में, मतलब आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं, और जब
1: हाँ
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है
1: जी
0: कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: हम कॉपी में क्या
1: उदाहरण देकर
0: करते थे,
1: समझाइए।
0: उदाहरण दे के समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी
0: कि डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सायं के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
2: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे

0: इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी। और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा था।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने
0: हाँ,
1: का,
0: उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है,
1: जी
0: काफ़ी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी। वे तीन पोस्टर फेसेस भी थे, NSG कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें कम इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं दिया,
1: जी
0: उनके लिए सब सेम थे।
1: सब सेम।
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा।
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज़्यादा लेते थे। मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार,
1: जी जी
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा
1: ओ
0: है ना।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: एक
0: एंड
1: कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते
0: आप
1: हैं
0: क्या
1: इस रोल के
0: सोचते।
1: बारे में?
0: हाँ,
1: क्या बहुत बड़ी बात है।
0: बहुत बड़ी बात है,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की,
1: जी
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ
1: हाँ हाँ
0: कि
1: हाँ
0: सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ।
1: जी
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा।
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल।
1: जी
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: हाँ
0: अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा
1: अच्छा।
0: हूं। मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक,
1: अच्छा।
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा। तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूँ। तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं, ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार, वो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ठीक है छोड़ यार। मैंने, वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए।
1: हाँ।
0: मैंने बोला सर एक पॉइंट है। बोले हाँ बोलो। मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है,
1: जी जी
0: इज अ कैप्टन ऑफ द शिप।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, ब्लडी एवरीथिंग, बोला हाँ गुड गुड, डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म।
1: यस।
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे।
1: हाँ।
0: आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा
0: सोच
1: है।
0: रहा है तो अच्छी
1: बिल्कुल।
0: बात है।
1: जी।
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूं,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं कोई
1: हाँ,
0: उसको ज्यादती तौर पर नहीं लेता हूं।
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: बहुत
1: होता
0: जरूरी
1: है।
0: है।
1: हाँ
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ।
1: जी
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और DSP राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपके प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और DSP राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी, लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनंती कर तो है कि, तो उस पर मुझे लगा ना कि इसमें बापू बोलना चाहिए,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: अब
0: हो रहा
1: तक
0: है।
1: वो महात्मा बोल रहा है, मगर
0: हाँ,
1: अब
0: अब तक
1: जो
0: प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोलते अरे करना यार काइंड ऑफ, तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसने नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो
1: हाँ
0: थोड़ी। मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है,
1: हाँ
0: ठीक है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, एक तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बापू पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट

0: उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है, बापू कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा, कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा।
0: तो विक्रम मराठी के में काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है,
0: बड़ा नाम है, शोज करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
1: हाँ।
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा।
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बम्बई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहाँ पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता, और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।
2: दो

0: लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: होती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया,
0: कॉलेज के ज़माने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका
1: वही
0: है,
1: नेक्स्ट।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो
0: पढ़वाते।
1: शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके।
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर दे के बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो
0: है।
1: ये छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: मैं उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहाँ जहाँ परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरे इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी जी
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके दिखता हूं,
0: जी
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
1: नहीं
0: है।
1: आएगा, सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस।
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम्प दे जाती है
0: जी जी जी जी और उसका जो भी
1: तुरंत
0: रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव तुरंत आना है।
1: तुरंत। यू फील सो गुड कि
0: हाँ
1: जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
0: जी
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
0: जी
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और
0: हाँ
1: मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छः छः दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक करेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में, तो
0: जी
1: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है, जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल
1: तो दैट दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन

0: रहे थे कि ऐसा सीन होगा।
1: होगा।
0: तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे? हाँ
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान
0: हाँ
1: मैं जब नागपुर में था
0: जी
1: और वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहाँ मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खंते,
0: जी
1: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो
0: हाँ
1: भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहाँ चला गया। वहाँ पे खाली इसमें नेचर के साथ
0: हाँ
1: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए,
0: अच्छा
1: और वहाँ मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहाँ पे लिखी। 5-6 दिन में वहाँ पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
0: अच्छा
1: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका तो वहाँ भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
0: अच्छा
1: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: लाइट कॉमेडी है उस
0: तो ये
1: टाइप
0: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
1: का। हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
0: हाँ
1: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के
0: जी
1: साथ, लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
0: जी जी
1: जो शायद उच्च और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
0: अच्छा
1: IPC 324, और वो जरूर बगल में। पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
0: जी
1: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
0: हाँ
1: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है,
0: जी जी
1: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
0: ओह क्या
1: या
0: बात है।
1: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
0: जी
1: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे गमा या
0: अच्छा
1: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहाँ पे वो रिलीज हुआ है तो वो हमने किया। वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
0: जी
1: और
0: जी
1: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
0: चलिए
1: हालांकि
0: इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
0: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा।
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
0: अच्छा।
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी,
1: जब
0: जी।
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब।
0: अच्छा।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी।
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब। तो वो कैरेक्टर मुझे आया, हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं,
0: अच्छा।
1: उनको अच्छा लगा है, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं।
0: अच्छा।
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाके ऑडिशन दे दूं।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा कैरेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था।
0: जी जी जी
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा।
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी जी,
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा,
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी।
0: अच्छा।
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसे
0: अच्छा,
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा।
1: और कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूँ, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
0: जी जी,
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो।
0: अच्छा।
1: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ।
0: हाँ।
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
0: कई शेड्स हो सकते हैं। जी।
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे निगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने एक कोड रेड नाम की सीरियल की थी, जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
0: हाँ।
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने फांसे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी।
0: जी जी।
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है।
0: ओह।
1: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस। तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
0: जी,
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
0: अच्छा।
1: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
0: जी।
1: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
0: अच्छा।
1: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही।
0: जी जी
1: दैट वे।
0: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई

0: गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
1: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव. जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मली भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो. लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
0: जी,
1: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही.
0: हाँ, मकरंद देशपांडे,
1: मकरंद जी थे उसमें,
0: उन पर वो फिल्म आ गया.
1: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
0: जी जी,
1: और ये गाना चल रहा है. और अभी बारिश आने ही वाली है, जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन. और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो.
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं यही गीत
1: जी.

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूँगा।
0: जी
1: तो सबसे ज़्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
0: अच्छा
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई

0: used it, created it actually with a friend of mine who is camera. तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स मैं एक साइड बनाता रहूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए.
1: अच्छा.
0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया, IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
1: जी.
0: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है. बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे. और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर.
1: जी.
0: मैंने वागले के बाद में अभी, वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है.
1: जी.
0: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था, उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार.
1: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए. तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
0: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है. अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
1: जी,
0: मैं आजाद हूं. वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था.
1: अच्छा.
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है.
1: ओहो, क्या बात.
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था. इतने बाजू इतने सर, गिनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से.
1: वाह वाह.
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी. तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए.
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही
1: यही गाना
0: बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जान से लड़ते हैं,
1: जी,
0: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल.

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं,
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती
1: दुर्भावना
0: वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी
0: जी।
1: फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी। आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीज़ों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, OTT प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं, विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी, जी जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, OTT, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूँगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी जी।
1: एक कलाकार की ज़िंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ।
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ
0: जी जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो,
0: बट
1: ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी, जी।
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने

0: जो ये प्रक्रिया है इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है,
1: जी
0: तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहां इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे। ये
0: हाँ
1: मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: जी
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते हैं।
0: ओह
1: तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, हाँ, उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट

0: कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं?
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
1: ओह क्या बात,
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
1: अच्छा,
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
1: अच्छा,
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है।
1: जी जी।
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊँ जितना मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
1: हाँ,
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ,
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं है।
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ, हाँ।
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ,
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी।
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या
0: बाकी बात? संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बात? बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं
0: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है।
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाज़ों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाज़ों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल है। एमटी मोम्बासा में सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नज़र रखे है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह विश्वभर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले रखे, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाज़ों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने का साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विद्यार्थी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मूसलाधार बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।

कार्यक्रम की पहली भक्तिमय प्रस्तुति लीजिए सुनिए आशा फिल्म से। नरेंद्र चंचल की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और बोल है आनंद बख्शी के।

कार्यक्रम की अगली भक्ति में रचना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। ये भजन हमने लिया है फिल्म जय संतोषी माँ से।

जी श्रोताओ, भगवान तो कण कण में विराजमान है, जरूरत है तो बस उन्हें याद करने की, उन्हें पहचानने की। चलिए अब कार्यक्रम की अगली भक्ति में प्रस्तुति पेश है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। इस भक्ति में रचना को गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

केदारनाथ फिल्म के इसी भजन के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युवा मंच।

युवामन सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त सीमा का नमस्कार, गुड इवनिंग। जी दोस्तों, मंगलवार की ये सुहानी सी शाम, नजारा कुछ ऐसा कि मानो दूर पहाड़ों पर बादल बस बरसने को तैयार हों। साथ ही ढलते सूरज के साथ आकाश मानो लाल नारंगी और सुनहरे रंगों से सज रहा हो। इसी ढलती शाम के साथ पशु पक्षी अपने आशियाने की तरफ रुख करते हुए और ठंडी ठंडी हवा मानो एक मीठा सा गीत हमारे कानों में गुनगुना रही हो। और जब नजारा कुछ ऐसा हो युवा दोस्तों, तो समझो आपकी शाम सुहानी है। और इसी शाम को और हसीन और मनोरंजक बनाने के लिए आकाशवाणी धर्मशाला लेकर आ गया है कार्यक्रम युवा मंच। जी दोस्तों, जिसमें आज बात होगी सैर सपाटा की। सुहाने नजारों की तो हमने बात कर ली दोस्तों, चलिए अब रुख करते हैं इन हसीन वादियों की तरफ और कर लेते हैं सैर एक खूबसूरत से शहर की, जो अपने आप में अद्भुत सौंदर्य का संगम है। विविध संस्कृति और सभ्यता का अनोखा समावेश यहाँ दिखाई देता है। आधुनिकता और ऐतिहासिकता का मिला जुला सा उदाहरण। और एक और हिंट मैं आपको दे दूं, जी हाँ, शिवालिक पर्वतमाला की गोद में बसा और रेणुका झील के पवित्र जल से समृद्ध है ये शहर। जी दोस्तों, समझ ही गए होंगे कि रेणुका झील कहाँ है। बिल्कुल, रेणुका झील है सिरमौर में। सिरमौर की ही सैर आज हम करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से और जानेंगे इसके बारे में और गहराई से, क्या कुछ खास है यहाँ, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं हम और आप। साथ ही जानेंगे यहाँ की बोली, भाषा, पहनावा और यहाँ के कुछ अनोखे रीति रिवाजों के बारे में। लेकिन उससे पहले युवा दोस्तों के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और युवा मंच में आज बात हो रही है सैर सपाटा की। जी हाँ दोस्तों, सिरमौर शहर की हम सैर कर रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के आंचल में बसा सिरमौर, जिसके उत्तर में ज़िला शिमला, पूर्व में राज्य उत्तराखंड, दक्षिण में राज्य हरियाणा और उत्तर पश्चिम में सोलन जिले की सीमाएं लगती हैं। ये ज़िला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खुशनुमा मौसम, समृद्ध संस्कृति और अनेक दर्शनीय स्थलों के लिए जाना जाता है। गिरी नदी यहाँ बहती है, जो कि शिमला के कोटखाई जुब्बल की पहाड़ियों से निकलती है, और ये नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और पौंटा साहिब में जाकर ये यमुना नदी में मिलती है। श्रोताओं, सिरमौर का मुख्यालय आप जानते ही हैं, नाहन है यहाँ का मुख्यालय, जो बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और यहाँ आपको रेणुका जी, राजगढ़, गुरुद्वारा बढ़ू साहिब, हरिपुर धार और हाँ पौंटा साहिब, ये खूबसूरत

स्थान कुछ मिलेंगे जहां आप इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और आप घूमने फिरने वहां निकल सकते हैं। बात करें रेणुका जी की, तो जो कि नाहन से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी से संबंधित है। नवंबर माह में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। रेणुका झील हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसकी आकृति किसी सोई हुई स्त्री जैसी लगती है। 2.5 किलोमीटर में फैली ये झील घने वृक्षों और पहाड़ियों के बीच है। यहाँ आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं, साथ ही साथ रेणुका जी का यहाँ मंदिर भी है और साथ ही साथ परशुराम जी का भी भव्य मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री मंदिर वो भी वहाँ यहाँ पर है और उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें तो बहुत ही बेहतरीन जगह है घूमने के लिए। तो ज़रूर निकलें जब कभी आपको मौका मिले। और चलिए अब फिर से रुक करते हैं गीत संगीत की तरफ।

जी दोस्तों, हाईवे फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना। और कई बार दोस्तों रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है पहाड़ों में भी। थोड़ी थोड़ी

0: दूर के बाद, थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद प्राकृतिक झरने, घने जंगल और सुंदर वादियों का नज़ारा भला कोई कैसे भूल सकता है। और यही वादियाँ आप देखेंगे रेणुका जी और गुरुद्वारा बढ़ू साहिब के बीच के रास्ते में, जी हाँ, जो कि सिरमौर में ही आता है। इसके बाद आप रुक कर सकते हैं पांवटा साहिब की तरफ। जी हाँ, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4 साल यहाँ गुजारे। युवा दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे विश्व में पांवटा साहिब ही एक ऐसा शहर है जिसे गुरु जी ने खुद बसाया और खुद ही नाम रखा, जिसका अर्थ होता है पांव टिकाना। ये एक शानदार जो है वो गुरुद्वारा यहाँ बना है और गुरु गोविंद सिंह के साहस, वीरता और गौरव की प्रामाणिकता को ये दर्शाता है। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं आप, तो आपको मिलेगी पीच वैली। जी हाँ, राजगढ़, जहाँ का आड़ू बहुत ही मशहूर है। 2170 मीटर की ऊंचाई पर बसा, जी हाँ, ये गांव, हम ये कह सकते हैं शहर, कस्बा, कुछ भी कह सकते हैं, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें दोस्तों, राजगढ़ में कभी पुराने समय में एक बहुत पुराना किला हुआ करता था, जो शायद अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक स्कूल ने ले ली है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, ज़रूर आप जाएँ, इस तरफ रुख करें। और चलिए एक संदेश सुन लेते हैं।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

जी दोस्तों, सैर सपाटा, इसके अंतर्गत आज हमने की सैर सिरमौर की, बहुत ही खूबसूरत सा शहर। और जल्दी से आपको बता दें कि इस शहर में, या हम ये कह सकते हैं इस सुंदर सी जगह में, आप हरिपुर धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ माता भंगयानी का मंदिर है, जो कि चूड़ेश्वर महाराज की बहन है। साथ ही यहाँ बाला सुंदरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और रेणुका जी तो हमने बता ही दिया। साथ ही साथ आप आनंद ले सकते हैं यहाँ त्रिलोकपुर के मेले की, बसुआ महोत्सव, साथ ही साथ सलोना महोत्सव का लुत्फ आप उठा सकते हैं। सिरमौर की बात करें सखियो तो दोस्तों, तो यहाँ सिरमौरी बोली बोली जाती है, और कहीं गढ़वाली तो कहीं पंजाबी का भी थोड़ा सा प्रभाव इनकी बोली में देखने को मिलता है। यहाँ के कुछ रिवाज बहुत ही अनोखे हैं, जैसे कि जोड़ीदार प्रथा। साथ ही एक और यहाँ रिवाज है जाजड़ा, जिसमें दुल्हन अपने रिश्तेदारों के साथ दूल्हे के घर बारात लेकर जाती है। यहाँ की धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो बहुत ही अधिक महत्व है इनका, और कोई भी विवाद हो जाए तो यहाँ देवता के फैसले को सर्वोपरि माना जाता है। खान पान में सिड्डू, बाबरू, धाम और कंडाली की सब्जी, जो कि जंगली घास से बनती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। पहनावा बहुत ही सादा है यहाँ का, और उतने ही सादे हैं लोग यहाँ के। तो ज़रूर रुख कीजिएगा दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, ज़िंदगी की भागदौड़ से कभी भी फुर्सत मिले तो बस रुख कीजिएगा सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ। और चलते चलते रुख करते हैं एक और प्यारे से गीत की तरफ, लेकिन समय जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। तो बस दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही साथ जब भी मौका मिले घूमने फिरने ज़रूर निकलिए। और हाँ, गीत संगीत और साथ ही साथ मनोरंजन का ये जो सिलसिला है, ये तो यूं ही जारी रहेगा। और गीत संगीत का भी कुछ ऐसा ही आनंद है कि जब भी हमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो जाए तो अगर हम गुनगुना लें, थोड़ा सा गा लें तो मन हल्का हो जाता है। तो बस आकाशवाणी की तरफ से तो यही है कि हमेशा गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। और इसी के साथ अब कार्यक्रम का समय भी हो रहा है संपन्न। दीजिए इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति, लेकिन मनोरंजन का सिलसिला जारी रहेगा आकाशवाणी धर्मशाला के संग। युवा दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से। 6:05 पर सुहाने गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रस्तुत किया जाएगा। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां। शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8 बजे आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशगान प्रस्तुत किया जाएगा। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत गायक सुखविंदर सिंह के गाए कुछ चुनिंदा नगमे। 9:30 पर हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी आप सुनेंगे। 10:30 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी पर भी। सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में आप सुनेंगे सुविचार के साथ इतिहास में 15 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी। 7 समाचार की सुर्खियों के साथ मौसम के मिजाज पर भी होगी बात। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी, जिसमें ग्लैमर गलियारा होगा बातचीत का विषय और फैशन की दुनिया से होंगी सखियां रूबरू। तो श्रोताओं, ये तो थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम और कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी थी। और आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:58 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार, थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से सोलन जिला की ममलीग पंचायत में ग्रीन पंचायत योजना के तहत 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ममलीग में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से वर्तमान में करीब 3000 यूनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो रहा है और वर्ष में करीब 8 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पंचायत को हर साल 14 लाख रुपए की आय होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है और पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करना इस दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारी सरकार ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी कदम बढ़ाए। हमारी एक सोच थी कि प्रत्येक पंचायत में प्रदेश की 500 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए और उस प्रोजेक्ट से जो आय होगी वो 25% पंचायत के विकास में और 25% उस पंचायत की जो विधवा बहने हैं, अनाथ बच्चे हैं, उसमें योगदान इनको मिले और 20% सरकार के खजाने में जाए। इस परियोजना से 14 लाख रुपया पंचायत को मिलेगा हर साल का।
0: इस दौरान कर्नल धनीराम शांडिल ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सभी वर्गों को अपना सहयोग देने का आह्वान किया ताकि हिमाचल चिट्टा मुक्त बन सके। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार निर्धन व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वे आज किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के निगुलसरी में जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के तहत बीपीएल परिवारों को इंडक्शन हीटर वितरित करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और परफॉर्मेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग लगातार बेहतर हुई है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पिछले 3.5 वर्षों में शिक्षा विभाग ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भाजपा द्वारा कुछ परियोजनाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास पूरी प्रक्रिया के तहत किया गया है।
2: 3.5-4 वर्षों में हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सी उपलब्धियां हमारे विभाग के द्वारा हुई है। आज जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जो आपके सर्वेक्षण होते हैं, चाहे आप नैस की बात करो जो जयराम जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मुझे आज परामर्श दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो 21वें स्थान पे थे। आज निरंतर जो हमारी सरकार ने प्रयास किए, आज हम टॉप 5 स्टेट्स में हमारी रैंकिंग है। हमारी चाहे नैस की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, वहां पर 18वें स्थान पे थे। वहां पर भी अगर हम राज्यों की बात करेंगे, हम टॉप 3 स्टेट्स में हमें इसमें स्थान मिला है। 100% लिटरेसी हुई, आज केरला के साथ हमारी गिनती होती है।
0: किन्नौर जिला के शिपकिला से चीन व्यापार के संबंध में आज रिकांगपियो में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिपकिला से व्यापार 1 अगस्त से आरंभ होगा जो 30 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने पुह के तहसीलदार भीम सिंह नेगी को इसके लिए ट्रेड अधिकारी नियुक्त कर संबंधित व्यापारियों से तालमेल स्थापित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने 56 ट्रेड मार्ट को जल्द पूरा करने को भी कहा ताकि सीमा के आर पार व्यापार सुचारू रूप से चल सके। मेरा युवा भारत अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए माई भारत जिला समन्वय समिति की बैठक आज शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने पंजीकरण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए 15 अगस्त तक माई भारत वेबसाइट पर युवा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अभियान के माध्यम से युवा नृत्य, रील, लघु फिल्म, मौलिक संगीत और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि शिमला जिला में 15 से 29 वर्ष के अधिक युवाओं को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। सोलन के नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में एनसीसी कैडेटों के लिए 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरमिंदर सिंह

0: आवेजा ने कैडेटों से शिविर में सीखे गए अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण के मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

सुरमई सांझ ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म सड़क से। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में ये गीत है, और शब्द रचना है समीर की।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुरमई सांझ यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां।

0: इसी कारण जरा सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना है ना, जिससे कि यहाँ के पशु पालक भाई हैं जो जरा से अपने पशु धन ते ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा तेना जो मिल रहा है, पशु तेना दे स्वस्थ रहे ना, बीमार नहीं होने का ना, अच्छी आमदनी यहाँ के पशु पालक भाइयों की चलती रहा है ना।
1: बिल्कुल। तो देखा पशु स्वस्थ रखने वास्ते जे है तां जो ये चीज़ां तां करने पौनी
0: हाँ जी
1: समय समय पर, और उस ते जेड़ा देखा एक तां आहंदे रोज़गार सृजन दे होर मौके नए पैदा होने, इस ते
0: हाँ
1: आहंदे किसान साथियों दे आय भी बढ़ने,
0: हाँ जी
1: और सारे दे बड़े गल है कि अगर पशुओं का जेड़ा चारा है जिसको अहें
0: हाँ
1: फीड वगैरह बोलते, तो सह जरूर जे उस वास्ते संयंत्र स्थापित करने चाहिए,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: जी
1: जित्थे ते जो मतलब फीड वगैरह जेड़े पशुओं की जरूरत दी मतलब चीज़ा ही वो
0: हाँ
1: मतलब स्वस्थ जेड़ा भोजन पशुओं जो मिले,
0: जी
1: और इस ते देखा चाहे मांस प्रसंस्करण आ चाहे उसका मूल्या, चाहे
0: हाँ
1: जिया अगर पशु ठीक होंगे तो ये सारी चीज़ा बदनी बदनी,
0: हाँ
1: और
0: जी
1: सारे दे वड्डी गल कि अगर दुधारू पशु है तो दिया अगर बिल्कुल से ठीक है तो देखा डेयरी दा जेड़ा काम है वो भी ठीक ठाक चली सका,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: इसका
0: जी
1: लाभ जहाँ हमें एडा नहीं है भाई कोई भी आदमी चाहे से अपना व्यक्तिगत लाभ ले सका,
0: हाँ जी
1: आपू कल्ला भी काम करने फिर भी पशुओं जो अपने स्वस्थ रख सकें, या फिर मिली जुली ने कट्ठे जियां कोई कंपनी से भी पशुओं जो कट्ठे पाली सकें।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ तो ये है कि ना, बाकी देखा बैंक इस वास्ते जैसे बड़े कम जे ब्याजा पर ऋण भी दिंदा
0: हाँ
1: और ऋण गारंटी दी भी सुविधा है, कि ना बाकी जेडे आहंदे पशु पालक है उन जो अगर पशुओं की देखभाल वास्ते कोई आधुनिक तकनीकी या कोई होर कामकार करने की जरूरत थी, तो इस वास्ते जैसे सरकार भी समय समय पर उन्होंने वास्ते नई नई योजना चलाती रहती।
0: जी ता हुण हरिये भाऊ जी गल इं कि सुनते पहले कुछ एक जड़े से स्नेह है ना,
1: जी
0: कन्नै फिरी दिखा भी अंब जड़े से पक्के हो, कन्नै जड़ा से
1: हाय हाय
0: है ना
1: हाय
0: अंबा तो जड़ा सा स्वाद है, कहना जड़े हाँ जो जड़ी सा ये अहाँ दी देर उताई जड़ी से टियाले बराम रखी है ही ना जे बाल्टू जवाई के
1: किसान मित्र
0: देखा
1: जी
0: वे कितने
1: ता
0: मीठे है ना।
1: मुआ पानी आई गया
0: हाँ
1: था,
0: तो
1: पर
0: देखा
1: पहले स्नेह
0: हाँ
1: सुन लेने हाँ
0: जी
1: फिर
0: हाँ
1: खाने हाँ अंब है ना।
0: जी
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
2: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
4: Nexa.
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.

0: भाई वाह हरिये भाऊ जी, दिखा भी अहाँ लोकगीत भी सुनिया करना देर हो तो आई दिखा कितने मीठे अंब जड़ा सा अहाँ जुटियाले पर रखी है खाने है ना।
1: बिल्कुल, तो देखा अंबारा भी पूरा मजा लिया, कने गाने दा भी पूरा मजा लिया।
0: हाँ दिखा ताइये दी जड़ी सा एक गल है मनने वाली है कि जल भी ताई इंच दिखा अपने जल पटियां पहा अपने वो तू आ रहा है खेती बाड़ी का काम करना जानती है ना।
1: जी
0: तो तिना जैसे पता होंगे कि टियाले पर अच्छ कुने ना कुने उन्होंने कभी तिना अंब हुई है कभी जी अजकल दिखा नाशपातियां लगी है ना
1: जी
0: सह हुई है या कोई खरबूजा हुई है भी ताइया कुछ ना कुछ जरा सह झोलू बच्चे पाया ही होंगे
1: ताली जे ताई सूझी जांदी तो पता वे ताईया कुछ ना कुछ
0: ना।
1: खुआई देना है ना।
0: हाँ जी इसके बाद जड़ी सह अगली गल इं कि दिखा बरसात का जड़ा सा ये मौसम है ना
1: जी
0: बरखा भी जड़ी सह पहले थोड़ी ज़्यादा हुई हैं लेकिन फिर भी हूँ भी जड़ा सह थोड़े थोड़े समय बाद हुआ करती हैं कने बरसाती का जड़ा ये जड़ा सा समा होंदा ये होंदा पौधा रोपण करने का ना।
1: बिल्कुल
0: ता इन्हां दिनां या इसते बाद च दिखा भी अहां गल करनी है कि बांझ दी ता दिखा बांस दी खेती जड़ी सै अहां ताइयां एक बड़ी उपयोगी कन अहां दे रोजगार जो बधाने वाली जड़ी सै ये खेती है ना।
1: जी
0: दिखा भी अजकल अगर अहां गल करिए ता बांझ ते जड़ा सै कितना सारा समान जड़ा सै तैयार होआ करदा कन अहां दे बाजारां विच जड़ा सै आई के तुसीं अहां तो हां खरीदा करदे है ना।
1: बिल्कुल
0: पहले तो

0: हाँ ये मनते हैं ना कि बांस दियाँ अगर हाँ जी डल्ला बनाई लिया टोकरियाँ या छाबड़ियाँ चंगेर बनाई ली है ना,
1: जी जी
0: लेकिन उस दे अगर हाँ अड़िए अगर हाँ दिखिए तो आज दिखा भी बांस दे इतना सारा फर्नीचर हुई या कुर्सियाँ हुई या मंजे हुई है और कई ऐसी सजावटी जिस यहाँ बोलते ना
1: और देखा इतना तक
0: हाँ
1: कि लोग घर बांस सारे बनाए रहे, होटल बांस
0: हाँ
1: सारे बनाए रहे, देखा किन्नर
0: हाँ
1: अलग ही मतलब रहने रहे अलग
0: हाँ
1: मजा, और देखने जो कितने
0: देखने
1: बांके
0: भी
1: लगते है
0: हाँ
1: ना।
0: देखा भी जितने भी अहाँ दे बारले बाहरी जल राज्य दे जल अहाँ दे तो जी जिस यहाँ बोलते ना पर्यटक घूमने वास्ते आंदे ने या कोई श्रद्धालु जी मत्था टेकना हिमाचल देवी देवतें की धरती है ना,
1: जी
0: तो आंदे तो सर दिखा भी ऐसा नहीं है कि सर जी कोई बड़े महंगे महंगे अगर देना जो कोई होटल रहने ताइए चाहिए हैं या कोई बड़े बड़े बड़े घर सह भी दिखते दे कि थोड़ी सुकून भरी जी सर जिंदगी सर कुतू सर थोड़ा समय निकाली भान करना जी तुम दसिया कि जेडे बंजते बने घर होंगे या जी कोई तिना कोई दुकान कोई कोटेज कुछ भी है उन्हें जैसा बड़ा पसंद करते हैं ना।
1: और देखा सर मतलब थोड़ा जहा अलग जेड़ी चीजा है उन्हें जो पसंद
0: हाँ
1: करते, और
0: हाँ
1: देखा हाँ दे जेड़े हिमाचल के लोग है उन्हें जो उन्हें दी आय च भी बढ़ोतरी होंगी,
0: हाँ जी
1: और जेड़े हमारे पर्यटक है उन्हें भी कई चीजा जी ऐसे हिमाचल च आई ने जी ऐसे नई मिलती देखने जो।
0: हाँ तब बंज जड़ा ये गरीब किसान ने दा साथी है अपने जड़े से जिस यहाँ बोलते ना बाजारीकरण दे अलावा भी इसियो अगर हाँ दिखा पे अपने घरें को जी तो हाँ दस्या पहले पाऊ कि कोई मकान बनाने कोई कराल बनानी कुछ बाड़ लगानी है ना
1: जी
0: कुछ डंडा सहारा लगाना था ये सारे कुल मिलाए कि अहाँ बोलिए कि जड़े से बांस की जड़ी खेती है ये अहाँ ताइया बड़ी मददगार करना प्राचीन काल ते ही जड़ी से जिस यहाँ बोलते ना एक
1: मददगार रही
0: हाँ कन
1: है
0: मित्र पौधा है यहाँ किसान साथियों का ना,
1: बिल्कुल।
0: तब बरसात के मौसम बिच जड़ा सा खूब सारा पौधा रोपण बांस का जड़ा सा करना अपनी खाली चरागाह घासनी है पर कने इसते सोगी तो सबसे बड़ा ये फायदा ये है कि ये जड़ा सा भूमि कटाव जो रोकने चे इससे हाँ जड़ा सा कोई भी जड़ा सा जिस यहाँ बोलते ना रुख बूटा नहीं है ना
1: बोलने का मतलब यही है कि फायदे फायदे कोई भी नुकसान नहीं है।
0: जी, तो फिर ते जड़ा सा सुन देन कुछ एक स्नेह कने फिर एक प्यारा दिया लोकगीत
1: जी
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 5.59 lakh. Yes, rupees 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
4: Nexa.
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 5.59 lakh. Yes, rupees 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
4: Nexa.

0: जी तो लोक गीत के बाद फिर ही सारे सुनने वाले का स्वागत है कार्यक्रम है मौजां ग्राएं दियां ना।
1: बिल्कुल जी,
0: ता बहु इं भी मौजा तो ग्राएं बिच लगी रहनियां कने इन दिनों मौजा ये लगियां कि छुट्टियां पईयां स्कूलों चा ना
1: और बच्चे भी देखा पूरी मौज लिया करते,
0: हाँ
1: नाने री भी मौज लिया करते, पर देखा सारे दे बड़ी गल ये है किसान मित्र जी कि बच्चे बरसाती दे मौसम च जे आ से जरूर समझाने और बच्चे री गल नहीं आपू भी हाँ देखा घर ते बाहर निकलते चाहे गड्डियां मोटर चला करते
0: हाँ।
1: चाहे पैदल जा करते अहां दे बजुर्ग ए
0: हाँ।
1: ठीक है ना जी। तो इन सारे जो इस बरसाती दे मौसम च जे आ से मतलब घर ते बाहर जे निकलना तो बड़ी सावधानियां ने निकलना,
0: बिल्कुल हाँ जी
1: छाता
0: हाँ।
1: तो कन्ने लेना ही लेना पर उसके बाद भी कई सावधानियां जी ताकि रोड़ा पर भी चल रहे देखा अजकल बरखा जिया ज्यादा होंगी तो रोड़ा पर गिटियां वगैरह आई जाती
0: हाँ कुछ रस्ते चफरोले होंगे है ना
1: चफरोले होंगे फिर तो देखा आते कई बार बाइक सवार है दो भैया वाहन चलाने वाले
0: हाँ।
1: तो कई बार स्किड हो जाती गड्डी और एडे एडे एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती कि देखा अपनी जीवन मृत्यु लड़ते बंदे है ना।
0: हाँ बिल्कुल
1: बोलने
0: हाँ
1: का मतलब यही है कि हाँ ये चीजा सारी ध्यान च रखनी और जाली वगैरह ते निकलना तो बिल्कुल मतलब अपने रामा ने अगर व्हीकल चलाए रहे तां भी रामा ने चलाना और
0: हाँ
1: पैदल चली रहे तां भी जे असे बड़े रामा ने चलना और
0: हाँ
1: जेडे आंदे बच्चे खासकर अजकल कुआं नाले च जे असे नाने चली जांदे
0: बिल्कुल
1: मौज
0: हाँ।
1: मस्ती
0: देखा
1: करने
0: गर्मी जल धुप लगी होंगी ना
1: जी
0: कहना गर्मी पई होंगी कहना फटोफट जरा असें नहाना बड़ी जन्दे खड्डा नालुआ च तो ऐसा भी जरा सा नहीं जरा सा करना देखा पिछे भी अहाँ या कुछ सुनते रहते कुछ जी सी ऐसी अनहोनी घटना घटित हो जाती है ना।
1: बिल्कुल देखा कई
0: हाँ
1: बारी अहर पासे जे असे धुप्पा होना कने हो
0: हाँ
1: सका उसते उपरले पासे किती ज्यादा बरखा हो रही और बच्चे जी नदी नाले च नाने चली जाते उपरा ते पानी बड़े ज्यादा बहाव ने आंदा और बच्चे जे कई बारी पानी च जे असे बही जाते अक्सर अहेड़ी खबरां जे अजकल बरसाती दे मौसम च समाचार पत्रां च पढ़ते। तो
0: हाँ
1: बोलने का मतलब यही है कि बच्चे जो जे आ इस ते रोकना और जिहड़ी कोई अगर बच्चे तैरने का शौक भी रखते तो जिहड़ी कोई सुरक्षित जगह ही तिथा जे बच्चों तुहें भेजी सकां है
0: हाँ जी
1: और बरसाती दे मौसम च होर भी जिहड़ा गड्डियां की गल कीती अहें होर भी अपना जिहड़ा मकान आ उसकी भी हिफाजत रखनी क्योंकि कई बार पानी इकट्ठा हो जाता
0: हाँ बिल्कुल
1: गलियां
0: पानी दी जड़ी से उचित निकासी।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम का समय इतो ही संपन्न होने जो है तकनीकी सहयोग दिता सुनील कुमार ने कने कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह हूँ हाँ जी दुनिया दिया अनुमति
1: अच्छा जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में, उस पर आधार

0: स्थापित है और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia, following renewed escalation of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for a safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on the two vessels, MT Al Bahia and MT Mumbai, during the transit through the Strait of Hormuz today.

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारिया श्रोतियां जो एक बारी फिरी ते टियाले ते दो हाथ जोड़ी के किसान मित्र दी प्यार भरी राम राम कने अज तो हाँ जो तो पता ही है कि हरिया पाऊ अज मेरे सोगी टियाले पर है तो पाऊ फिरी ते जड़ा सा टियाले पर तुहां दा स्वागत है
1: किसान मित्र जी तुहां जो भी कने हां दे सारे किसान साथियां जो एक बारी फिर जे है संजा दी राम राम
0: जी। ता दिखा भी गलबात इं आ कि कार्यक्रम किसान वाणी लेकर अहाँ हाजिर जड़े से हूँ है ने इतों टियाले पर अहाँ बैठे होने कहना कार्यक्रम ही अहाँ दे किसाना दा है
1: बिल्कुल
0: ता गलबात जड़े से कर खेती दियाँ कि अजकल दिखा अहाँ दे किसान साथियाँ खरीफ दी अपनी मुख्य फसल जिस धान होइए छली होइए माँ होइए तिल होइए सोयाबीन होइए या और जितनी भी दलहनी फसल हियाँ सती ना अपने खेतरां विच जड़ियां सै बीजी दियां ने
1: जी
0: कने हुण इस विच जड़ा सै हां जो कम काज करने दी जड़ी सै जरूरत ए है कि जियां खरपतवार नियंत्रण होई आ सोगी जियां विच जिन्हां फसलां जो पानी दी जरूरत है उन्हां च पानी भराव करना जिन्हां विच जरूरत नहीं है जियां छली होई उन्हां दे पानी जड़ा सै निकासी दा ध्यान रखने दी जरूरत है इस ते सोगी जड़ा सै उचित मात्रा विच जड़ा सै खाद दी भी जड़ी सै जरूरत है ना।
1: बिल्कुल किसान मित्र जी तो देखा सारे दे पहले तो अहम जेड़े किसान साथी है उन्हें मतलब इस टाइम तक जे अस छलियां दा काम भी लगभग देखा खादी तक पूजी आयरा बाई लोड दिते ताले किते नंदाई कीती है ना। और देखा धाना दे जेड़े खेत थे उन्हें जो भी धान लाने वास्ते तैयार किते और अजकल देखा ही करते कि अहम सारे जेड़े किसान साथी है ज़्यादातर धान लगाने च व्यस्त है और लगभग कहीं लाई भी दिते तो जियां तुहें खरपतवार नाशकां दी गल कीती तो इस विच जे है थोड़ा ध्यान रखने दी गल है। कई बारी अहें गलत दवाई दा गलत जगह प्रयोग करी देंदे तिसते जे अहां दी सारी मेहनत यानि कि लगी लगाई फसल जे ऐसे कई बारी खराब होई जांदी। एक बारी मेरे ते भी होया थोड़ा किसान मित्र जी तो यह गल्लां मैं जरूर अपने किसान साथियों जो गलाने चाहता कि दवाई जे अजियां चाहे छलियां दी फसल या हंदी चाहे धाना दी तो थोड़ा जरूर पता करी ने फसल लगाने ते कितने दिनों बाद या धान लगाने ते कितने दिनों बाद कितनी मात्रा च कितने जेड़ा क्षेत्र आहंदा आया उस विच कितनी दवाई दा प्रयोग होई सका से सारी चीज़ां जे जरूर इस बारे च जे आ कुसी ने गलबात करनी जेड़े दवाई बेचते उन्होंने पूछी लेना दाएं ढंगा ने तां जे आ फिर जे दवाई दा जेड़ा प्रयोग आ छिड़काव आ से करना।
0: बिल्कुल हाँ जी जी इसते सोगी जड़ा सा अहाँ गल करनी है दिखा अहाँ दे किसान साथियाँ अपने खेतीबाड़ी दे कम काजे करने मते सारे दिन खेतीबाड़ी दे होर भी दिन अपनी जिसी अहाँ बोलिए ना कि आए दे होर स्रोत दिन जड़े से अपनाए होंगे है ना
1: जी।
0: तो अगर अहाँ गल करिए मधुमक्खी पालन का जड़ा व्यवसाय है ये भी एक बड़ा जिसी अहाँ बोलिए ना कि महत्वपूर्ण व्यवसाय है कने काफ़ी अहाँ दे जड़े युवा साथी होइए अहाँ दिया किसान भैन होइया किसान साथी होइए से इस काम काज जो करा करते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल तो देखा होर भी अहम किसान साथी मतलब जी मौसमां दे हिसाबां ने अगर गल करिए तो देखा समय समय पर अलग अलग व्यवसाय जियां दोहे मधुमक्खी पालन की गल की होर भेड़ बकरी पालन ये चलता रहिंदा जियां होर होर मतलब जियां देखा तुहें
0: बकरी पालन होई या मछली पालन है
1: मछली पालन होई
0: मुर्गी पालन है
1: मुर्गी पालन
0: मशरूम दा काम होई या सिलाई कताई बुनाई दा कोई भी काम है तो आज हां गल करनी है मधुमक्खी
1: पालन। हाँ। तो देखा ये सारे जिहड़े काम है दसे पालन दे तो इन्हां जो बोलने दा मतलब ये है कि अगर अहें वैज्ञानिक तरीके ने कर दे और अच्छी किस्म दे चाहे बीजां दी गल करिए अच्छी नस्ल दे जेड़े आंदे पशु हुए चाहे भेड़ बकरियां दी गल की तुहें मछलियां दी गल की तो ये सारी चीज़ां जी अगर बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके ने अगर अहें काम कर दे तो इसते जेड़े आंदे किसान है उन्हां दी आय भी बढ़नी और सौगी सौगी जे एक आंदे लोगों जो रोज़गार की भी एक नए अवसर मिलने। तो देखा अज अहाँ जेड़ा मुख्य तौर पर अस मधुमक्खी पालन के बारे च गल करनी तो मधुमक्खी दी अगर गल करिए तो देखा वैज्ञानिक तरीके ने पाली करी जे अगर अहें मधुमक्खी ते क्या क्या चीज़ा शहद मोम पराग रॉयल जेली प्रोपोलिस और मधुमक्खी विष ए दे

0: उत्पाद जे प्राप्त कर सकते। और खेतीबाड़ी सौगी ये जिया व्यवसाय कोई एड़ा नहीं है, इस ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं।
1: हाँ
0: बस एक यही गल है कि अगर तुम्हें अच्छी किस्म की मधुमक्खी की नस्ल अगर लंदी है तो उस ते बाद जे इस विच अहें अच्छा मुनाफा कमाई सकते।
1: जी, कन्नै इक गल जी, अहाँ दे सुनने वाले अहाँ दे श्रोता सारे जानते भी हैं कि दिखा अगर अहाँ गल करिए ना तो मधुमक्खी दे बिना मानव जीवन संभव नहीं है धरती पर, है ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ दिखा पे इस ते सोगी अगर अहाँ दो ही गल करिए तो अहाँ दे जितने भी बागवान साथी हैं ना, अहाँ दे किसान साथी हैं ना, उन दी फसलां ते जेड़ा सा बंपर उत्पादन लैने ताइया भी जेड़ा सा मधुमक्खियाँ एक जिसी अहाँ बोलते ना बड़ा भारी योगदान दिंदियां ने। जल वे एक डाल पर बेगी दुए डाल पर बहनियाँ दुए दे त्रीए पर तीए तीए जगह दिखा पे एक परागण का जल एक कम होंदा है। ताई जड़ा सा अहाँ जो अहाँ दे बागवाना जो अहाँ दे किसान साथियाँ जो जड़ सा फसल बिच उत्पादन जड़ा सा बांका मिलता है ना।
0: हाँ तो देखा किसान मित्र जी, इन्ह सारिया गलों सौगी अह अपने किसान साथियों जो ये भी जरूर दसना कि केड़ी केड़ी जे प्रजातियां ही मधुमक्खियां दी उन्हें पाली कर जे अहें ज्यादा तो ज़्यादा मुनाफा कमाई सकते अहां दे किसान साथी भी। तो देखा एक है एपिस मेलीफेरा, ये यूरोपीय मधुमक्खी और इस जो व्यावसायिक पालन वास्ते जे सारे ते ज़्यादा उपयोगी मन्या जाता।
1: हाँ जी
0: और दूजी जी किस्म है एपिस सेरेना इंडिका,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: ये भारतीय मधुमक्खी है, इस जो भी बड़ा उपयोगी जो है उत्पादन वास्ते मन्या जाता। और तीजी किस्म एपिस डोसर्टा और चौथी एपिस फ्लोरिया, तो ये जी ये छोटी जंगली मधुमक्खी। कने एपिस डोसर्टा की गल करिए तो ये बड़ी जंगली मधुमक्खी, मतलब ये दोनों किस्म जी से जंगली मधुमक्खियां दी। तो इस वास्ते देखा मधुमक्खी पालन वास्ते जे अहां जो सारे दे पहले कुछ सावधानियां भी रखने पौनी। तो सारे दे पहले क्या है कि अहां जेड़ा छत है उसको स्वच्छ रखना और बिल्कुल सुखिया जगह ये होना चाहिदा। और समय समय पर जेड़ा रोग है मधुमक्खियां जो लगने वाले या कोई कीट है तो उन्हें भी जांच होनी चाहिए। और फुलां वाले जेडे क्षेत्र है उन्हें दे नेड़े ही छत्ते हो, कने गर्मियां का मौसम कने या फिर बरखा का मौसम आता उसते भी आहां दे जेडे छत्ते उन्हें सुरक्षा होना चाहिए। और लगातार जो है निरीक्षण कने उचित प्रबंधन की जेडी व्यवस्था है उस जो करी करी मतलब अहें अपने इस कम से जैसा मुनाफा कमाई सकते। हाँ तो देखा एक इस जो इस कम जो सारे तो बड़ा करने रहा यही उद्देश्य है कि एक ता मतलब शहद कन्ने अन्य मधुमक्खियां जो है उन्हें उत्पादन बढ़ना और उन्हें जेडे प्राप्त उत्पाद है वह भी बढ़ने और जेडे फसलों जो पराकण है उन्हें जो बढ़ाई करी भी उत्पादन च वृद्धि होनी और अहम किसान साथी उन्होंने आय च भी जैसे बढ़ोतरी होनी और जेडे अहम ग्रामीण क्षेत्र है उस विच रोजगार के नए ते नए अवसर पैदा होने।
1: जी, तो दिखा भी अहाँ जल गल बेही जाते ना ना तो
0: जी
1: हाँ जो ध्यान नहीं रहता कि अहाँ के किसान साथी हैं जो जी सही इस वेले निहाल पैसा या एक लोकगीत दी है ना
0: जी
1: सुनते नहीं, एक
0: जी
1: लोकगीत के ना उसके बाद फिर एक उन्नत किसान होर कन्ने की गई गलबात।
0: जी

0: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए। चाहे वो अहां दे कृषि वैज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी च मिंजू अज मौका मिला कन्ने मेरे कन्ने जुड़ा करदे ने एक उन्नत किसान, ओवा करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा।
1: मेरा नाम ठाकुर इंद्र
0: जी। अच्छा जी, ता कौन ग्राम पौंदा तुहां दा?
1: साडा ग्राम पौंदा मावा।
0: हां जी।
1: चैत मनई।
0: अच्छा, कने तहसील?
1: तहसील उप हार चक्या।
0: हां जी, कने ब्लॉक कौन पौंदा तुहां दा?
1: रैत पौंदा जी।
0: अच्छा, ता इंद्रजीत जी खेती बाड़ी करते तो? हाँ,
1: बड़े मजे दी करते खेती बाड़ी।
0: अच्छा, ता तुहां वाल कुल कितनी जमीन है?
1: कोई है 25 एकड़ी।
0: ता क्या ये सारी खेती करने काबिल है?
1: हां, थोड़ी है काम, मतलब बाकी खेती बाड़ी करते हैं। इच अरदल लगाने हैं।
0: हां जी।
1: अरबी लगाने हैं।
0: हां जी।
1: बाकी और खेती बाड़ी करते हैं, बीच सब्जी भी बीजते हैं।
0: अच्छा,
1: सब्जी बड़ी अच्छी चली हो, थोड़ा मौसम के कारण जी ये मार पई है।
0: अच्छा,
1: ये तो सब्जी हर एक चीज लगाई है। और ये जड़ा बीज है।
0: हाँ जी।
1: हुशियारपुर से लेने असा रानीताल लेने।
0: अच्छा।
1: हाँ जी।
0: तो यानी कि रानीताल कोई ले के आंदे होने हुशियारपुर से? दुकान है कोई?
1: हाँ, दुकाना ना।
0: अच्छा,
1: ते जैसे कि रैत ब्लॉक है।
0: हाँ जी।
1: बड़ी बड़ी दुकाना ना रानीताल।
0: हाँ,
1: उतो लेने जाए। डेढ़ डेढ़ फुट का एक बैंगन लगे, एडी उपज जगह साड़ी। हाँ, थोड़ी समझो प्रॉब्लम एक ही रही, पानी का स्रोत नहीं है।
0: अच्छा,
1: पानी कोई हैंड पंप नहीं, कोई ट्यूबवेल नहीं।
0: हाँ जी।
1: इसे कारण मार पौंदी। हाँ, सब्जियां बढ़ते भी बड़िया, बेच भी दिने।
0: अच्छा,
1: और हर एक चीज बूटा पौधा जड़ा है।
0: अच्छा, अच्छा,
1: लगाया है।
0: जी तो हाँ दस्या कि तुहां हुशियारपुर से बीज जड़ा से मंगाते ने कने रानीताल से लेउंदे ने?
1: हां जी, हां जी।
0: तुहां जो किया पता लगा कि हुशियारपुर बढ़िया बीज मिलदे? तुहां पहले
1: असा बीजी की दिखिया।
0: अच्छा,
1: तिना दे कहने पर बीज लंदा।
0: हां,
1: बड़ी शैल ग्रोथ हुई।
0: अच्छा,
1: कुछ लगाने का भी तरीका हुंदा।
0: हां जी।
1: हां, अगली कर चराने ते भी सिखिया।
0: अच्छा,
1: साडे कैंप भी लगदे, तां जाने कदी लपैणा।

0: लगी जाता।
1: अच्छा
0: हाँ जी, पंचायत के थ्रू भी लगी जाता, जंगलात के थ्रू भी सदी लेंदे कल।
1: अच्छा, यानी कि तुहां सिखलाई लई है खेती दी?
0: हाँ हाँ, सिखलाई ली।
1: अच्छा, क्या क्या सिखलाई लई?
0: कदालू कदूलू भी मिलते सन जो करने फिर जे अगर सह खेती बाड़ी लगाने ते वास्ते।
1: अच्छा, जियां तुहां दस्या कि तुहां सब्जी जिहड़ा सह उगांदे हन, तां इस जियां बीज ते तुहां दसी ता कि अहां बाहर ते लैंदे हन, बाकी जियां खाद दी गल करदे हन तां खाद कुण दे पांदे?
0: खाद असां देसी पांदे, गोबर दी।
1: अच्छा,
0: पुराना मैल होवे।
1: हाँ जी,
0: खड्डा कढो उसे बिच मैल पा, पहले बीसी पा सीका दी दवाई।
1: हाँ जी,
0: तिसे बिच मैल पा तिसे ऊपर बीज लगा।
1: अच्छा,
0: ते जितना डूगा बीज मतलब खड्डा निकाल के।
1: हाँ जी,
0: जितना सब्जी दी उगत हुंदी।
1: बिल्कुल,
0: बड़ी सब्जी निकलदी पे।
1: हाँ जी
0: हाँ जी,
1: तुहां दा जल उत्पादन जिंगे तुहां बोलिया कि यहां देसी तरीके कन्नै तैयार करदे हन।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: बिच कदी कोई बीमारी वगैरह भी आई जांदी कदी?
0: चलो बीमारी आई जांदी। हां, बीमारी तो आई जांदी।
1: हाँ जी,
0: गर्मी दे कारण बीमारी भी फैली जांदी, पर इस जहां स्प्रे भी करी दिंदे।
1: अच्छा,
0: स्प्रे लस्सी हुंदी है।
1: अच्छा,
0: खट्टी लस्सी।
1: हाँ जी,
0: तिच तुहां पानी 2-3 लीटर डाली दिया।
1: हां,
0: सह मारी दिया, तिते भी खुशबू। फिर फरनेल होता है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: पोचा लगाते हैं।
1: हाँ जी,
0: वो फेंक दो ऊपर, उसी से खुशबू से ज्यादा कीड़ा नहीं आता है।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ।
1: अच्छा, इसके बाद जी तो गल दस्या, जी तो पहला दस्या कि तो बंडी भी देंदे सब्जी। दिखा ग्राम च तो यह जरा सा एक आपसी भाईचारा हों कि बंडने की एक रीत है ना।
0: हाँ चलो, तऊ चाचे सारे सांझे तो देना ही पौंदी।
1: जी बेचनी हो तो खुद बेचते जाए के
0: बेचनी तो कल पिंड चली है।
1: हाँ जी,
0: पिंड च देने खुद 40 रुपये किलो तो सत्ती देने। साड़ी तो ज्यादा लेंदे नहीं।
1: हाँ जी,
0: बीमारी वाली चीज है, 50 भी ले लेंदे, 100 भी ले लेंदे, सड़ते तो 40 भी नहीं लेंदे।
1: हाँ, देखा भाई ग्राहक जरा ये नहीं दिखता कि गुणवत्ता कुछ है ना।
0: हाँ, कौन देखता
1: है? ये तो ना दिखना कि सस्ता कुछ वहाँ है।
0: सब नहीं दिखते ना। हाँ, महंगा दिखना सब हो भी खराब हुआ है।
1: हाँ जी,
0: साड़ी सस्ती चीज होनी करने बीमारी भी कोई नहीं होनी।
1: हाँ जी,
0: बगैर दवाई वगैरह भी स्प्रे तो नहीं होती है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मगर फिर भी समझो नहीं देते लोग, तो इसते खाली मनीजिया भी बेचे उन्हें।
1: अच्छा
0: हाँ जी,
1: इसते सोगी जियां छली धान वगैरह भी लगांदे?
0: धान बांधे थे, धान छड़ी थे।
1: हाँ जी,
0: उजाड़ा बड़ियां हुई।
1: हाँ,
0: मतलब जंगली जानवर तो है नहीं हन, पर हुण गायें दांत भी छड़ी ते लोकां।
1: जी जी हाँ जी,
0: तो हुण दिने तो असा भारा करी सकदे, राती क्या दा करना।
1: तो बाकी छली लगाइयो?
0: छली लगाइयो।
1: छली देसी है?
0: देसी।
1: चिट्टी की लाल है?
0: चिट्टी लाइयो, कुछ ब्लॉक दी भी लाई थी। जिहड़ी ब्लॉक दी लेउणी उसे दवा केमिकल हुंदा, उसे कीड़ा नहीं लगदा।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: हाँ ये भी एक्सपेरिमेंट किया सा।
1: अच्छा
0: हाँ जी,
1: छली भी तो हाँ, यानी कि इसे मिट्टी चढ़ाते होने, गुड़ाई करते होने ना?
0: बिल्कुल, इसकी गुड़ाई 2-3 बार निंदाई करनी है, उसको ग्रोल देना उच्च मतलब।
1: अच्छा, यानी कि दवा नहीं पाते, गुड़ाई करना?
0: हाँ, तो घाय स्प्रे भी नहीं करते क्योंकि पशुएं खाना होता।
1: हाँ जी,
0: शायद दूध ऐसा पीना होता।
1: हाँ जी,
0: ये तो कल ही करना पौंदी, जी बड़ी बीमारियां जड़ बूटियां आई हैं।
1: हाँ जी,
0: ये पंज फुली आई है, फुलनू आई है, तो इसते अब थोड़ी बहुत बाही लिया था, इस निंदाई कर लिया बैठी उठी के।
1: तो डंगर बच्छू क्या क्या रखे हो घर?
0: जर्सी गायें रखी हैं 2।
1: अच्छा,
0: सुई हाँ।
1: हाँ जी,
0: ते बड़े मजे दे दूध खाने पीने हैं।
1: अच्छा,
0: बांधी बिलाए 2-3 किलो।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: जी, किन्ने का दूध हो जाता घर?
0: घर हो जाता 7-8 किलो, 10-21 सुई हो गाल है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा, तो बांधी क्या भाव बिकी जाता दूध ग्राएं च?
0: ग्राएं च ले लेंदे 50 रुपये।
1: अच्छा हाँ, दिखा जियां अनाज है ना, ये फीड महंगी हो अगर दी चोकर तारा मेरा घा तो तीन दुद्ध रेट भी जरा बढ़ना चाहिए। ग्राएं चे चलो इतना ही होंगे कि ग्राएं का एक आपसी भाईचारा भी बने रहा कि चलो अगर ग्राएं चे 50 रुपये बिकी जा तो मैं किसान जरा प्रवाह नहीं मारता।
0: चलो दूर नहीं जाना पौंदा। फीड फीडा फाडा सिर हो गया चार पैसे।
1: जी हाँ जी,
0: बाकी तो और आज चलाई तो चली रहती है।
1: बाकी जी खोआ वगैरह नहीं काटते? पनीर वगैरह
0: खोआ खा, उसका वजन नहीं होता गाय का दूध है।
1: अच्छा अच्छा,
0: उससे पैसे भी कम हो जाते हैं और लकड़ियां ज्यादा जलाना पड़ती है।
1: हाँ जी, छा छोड़ दे,
0: लस्सी छोड़ लेंदे।
1: क्या
0: 4 सुख हुई है?
1: हाँ जी,
0: लस्सी खा लेनी, दही खा लेना।
1: हाँ जी,
0: मक्खन पनीर हो जाता।
1: हाँ,
0: इस चो और बहन घी बिकी जाता।
1: हाँ, गाय का घ्यो क्या भाव मिली जाता लेना हो तुहां दे इलाके च? तां
0: देंदे 900 रुपया।
1: अच्छा, बिकी जाता ना?
0: बिकी जाता।
1: हाँ, दिखा कहना गाय दे की हो जीता जड़ी से बोलते ना कि बड़ा भरी दे जड़ी से आयुर्वेदिक गुण है ना।
0: हाँ,
1: कहना जी मालिश करनी हो या कुछ भी दवाई हो या
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत लाभदायक होता। पर
1: इसते सोगी जी तुहां दस्या कि तुहां वाल काफी खुली जमीन है, जमीन च जी कोई पौधे वगैरह भी लगाए हो जी फलदार?
0: पौधे लगाए, देसी अंब लगाए, वैसे दूसरे भी लगाए हैं।
1: हाँ जी,
0: नींबू लगाए हैं, गरगल लगाए हैं।
1: अच्छा,
0: अरड़ लगाई है।
1: अच्छा
0: हाँ, काठे अंब, देसी अंब बहुत लगाए हैं।
1: हाँ जी,
0: कोई कोई संतरा भी लगाया, बीच नींबू लगाए हैं।

0: आंबले लाए और
1: आंबले लाए बस यही लगायो।
0: अच्छा अच्छा
2: अच्छा
1: आलू वगैरह भी लगाते हैं, आलू भी काफी निकल जाते हैं। प्याज निकाले 2 क्विंटल।
0: अच्छा
1: हाँ, इसमें मेथी निकाली हमने,
0: प्याज 2 क्विंटल कटे।
1: 2 क्विंटल
0: इबे तो प्याज का भा खरा तो पहले बेची अड़ी
1: मैं 30 रुपये किलो पहले बेचे अड़े।
0: अच्छा
1: हाँ जी, फिर मुझे बड़े पिछे पे रहे तो हाँ दे दिया पर मैं नहीं दिते।
0: अच्छा
1: तो मैं इस बात रखियो कोई क्विंटल लगे पियो और।
0: अच्छा
1: चाइस उगाई की
0: हाँ जी। दिखा इस बार दिखा जिया की प्याजा का भा काफी उचा जा करता ना।
1: बिल्कुल मैं बेचे होता था मैं फसी गया
0: कन दिखा तो हाँ रखियो कन तो हाँ अपने घर चीज है ना। अच्छा
1: हाइब्रिड का बीज लाया।
0: अच्छा इंद्रजीत जी अहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना सह दिखा नौकरी पिछे ता तू घुमा कर दे इदे बावजूद तिना वाल अपनी खरिया खुलिया जमीना भी है ना उस नौजवान युवा पीढ़ी जो तुहां क्या संदेश देना चाहे
1: घरे च कमानता तो ओदी बैटर है नौकरियां तो मिलनी नहीं आहा तक लाने पे तुहां जा खेती बाड़ी है बा बड़ी शल गल है पे कहना अपनी जगह बनिया रहंदी चार दाने भी हो जंदे पट्टियां च खेतरां च
0: कुल मिलाई की ए बोली सकदे की मेहनत करा।
1: हां मेहनत करा
0: जी। इंद्रजीत जी तुहां अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहां कन्ना सांझा किते अपना कीमती समय तुहां अहां जो दित्ता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी। ता ए ता थी किसान उन्नत किसान होरा कन्ने कीती गई गलबात कने इसते जेड़ा से अहां जो क्या फायदा होंदा कि जल अहां एक ही दूए किसानां दे अनुभव तिन्हां दे तजुर्बे अहां जो सुनने मिलदे हैं ता अहां दे विच भी एक प्रेरणा जेड़ी से जागदी है कि अहां भी कियां जड़ी से उन्नत विज्ञानिक विधि कने खेतीबाड़ी करिए
2: जी।
3: इसते बाद कांगड़ा सब्जी मंडी ते थोक भाव दी सूची भी टियाले पर पुजी होवै कने हरिए भाव होने लगे हैं दसना कि मंडिये विच क्या क्या सब्जियां कने फलां दे भाव जड़े से रहे न।
2: बिल्कुल किसान मित्र जी तो देखा आलू घट्टो घट जे आलू दा मुल रहा 10 रुपये और बदो बद 20 रुपये यानी कि 10 ते 20 दे विच जे आलू सब्जी मंडी च बिकिया हुंदा प्रति किलो दे हिसाब नाल। प्याज 35 ते 36 टमाटर 20 ते 40 और लहसुन 160 ते 70 अदरक 200 ते 220 शिमला मिर्च 60 ते 65 अरवी 25 ते 30 खीरा 20 ते 40 मटर 100 ते 120 फुल गोभी 40 ते 50 बंद गोभी 20 ते 25 बैंगन 20 ते 25 कद्दू 18 ते 20 पालक 32 ते 35 हरी मिर्च 28 ते 30 और धनिया 120 ते 180 भिंडी 20 ते 30
3: जी
2: और करेला 20 ते 25 फ्रांस बीन 60 ते 65 मशरूम 170 ते 180 और गल करी अगर फलां दी तो देखा सेब 50 ते 200 रुपये
3: जी
2: और केला प्रति दर्जन 50 ते 60 अनार 140 ते 150 अमरूद 80 ते 90 और पपीता 50 ते 60 और खरबूजा 35 ते 40 पलम 50 ते 110 लीची 150 ते 200 अंब 100 ते 110 और तोता अंब जी ऐसे 50 ते 60 और दशहरी 40 ते 60 नींबू 60 ते 65 और गल करिए नाशपति दी ता 120 ते 140
3: जी। तो ये तो थे कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक भाव है ना
2: जी।
3: कर दिखा जलू अहाँ सब्जी जाएगी कुती बाजार बिच जलू अहाँ खरीदनी है तो हाँ जो थोड़ी इस जड़ी से ज्यादा दामा पर मिलनी है ना।
2: बिल्कुल जी। सह
3: पता कोई पाओ एक बारी मिंजो जड़ा सा मेरे ग्राएं दे ताऊ मैं जड़ा सा हक पाई थी
2: जी।
3: बोले किसान मित्रा गल सुन बोले हाँ तो हो तो बोले कल सब्जी दे भा तो हाँ ये दसा दे ना मेरी तो बोलिया तू दुकानदारे ने बहस हो गई बोले तीन मिंजो ये भा लाए बोलिया ना
2: जी जी।
3: हाँ जड़ा सा बार बार ये बोल कि जेड़े ए ने थोक भाव मंडी रेट है ना।
2: बिल्कुल।
3: इसके बाद इया किराया भाड़ा भी जेड़ा सा थोड़ा लगना है दुकानदार जल्लू समान मंडी ते
2: लेना है दो पैसे कमाने।
3: हां तो ए है कि जल्लू हां किसान अपना उत्पादन जल्लू हां मंडी विच जाएगी बेच दे ना तो ए थोक मंडी भाव जेड़े से मूल्य ना ना।
2: बिल्कुल
3: जी। इसते सोगी जेड़ा सा हां बार-बार टियाले दे माध्यम ते ए संदेश दिंदे रहंदे ने कि विज्ञानिक विधि कन्ने अपनी खेती जो तुहां करा आए दिन विज्ञानिक नई नई तकनीक नए नए शोध नए नए बीज जड़े से अहां किसानां दे कल्याण ताईं जड़े से लई कि ये योजना इतनी जितनी तकनीक हैं आंदे ने विज्ञानिक तो हाँ जो खेतीबाड़ी च विज्ञानिक तकनीक कन्ने तरीकियां जो जरूर अपनाना चाहिए ना।
2: बिल्कुल
3: जी। इसी कन्ने ही

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्या कार्यक्रम का समय इतनी संपन्न होने जो है। तकनीकी सहयोग अहें दिता सुनील कुमार ने, कन्या प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम दे जितेंद्र पाल सिंह उन्हां दुनी दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जय हिंद।
2: किसान साथियों।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 होने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
0: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग पंचायत में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का किया लोकार्पण। कहा, पंचायत को हर साल 14 लाख रुपए की होगी आय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, हिमकेयर

0: योजना को लेकर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में हिमाचल की शिक्षा रैंकिंग हुई बेहतर। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहे बिजली सुधार कार्यों का श्रेय ले रही सुक्खू सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से सोलन जिला की ममलीग पंचायत में ग्रीन पंचायत योजना के तहत 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ममलीग में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से वर्तमान में करीब 3000 यूनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो रहा है और साल में करीब 8 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पंचायत को हर साल 14 लाख रुपए की आय होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है और पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करना इस दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारी सरकार ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी कदम बढ़ाए। हमारी एक सोच थी कि प्रत्येक पंचायत में प्रदेश की 500 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए और उस प्रोजेक्ट से जो आय होगी वो 25% पंचायत के विकास में और 25% उस पंचायत की जो विधवा बहने हैं, अनाथ बच्चे हैं, उसमें योगदान इनको मिले और 20% सरकार के खजाने में जाए। इस परियोजना से 14 लाख रुपया पंचायत को मिलेगा हर साल का।
0: इस दौरान कर्नल धनीराम शांडिल ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सभी वर्गों को अपना सहयोग देने का आह्वान किया ताकि हिमाचल चिट्टा मुक्त बन सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में 422 मेगावाट किशाऊ बहुदेशीय परियोजना के एमओयू के प्रारूप की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में किशाऊ बहुदेशीय परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति बनी है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई वित्तीय निवेश किए बिना प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार करने के लिए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आयोजित विश्वविद्यालय कोर्ट की 36वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने विद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान गतिविधियों को सामूहिक प्रतिबद्धता व संस्थागत नवाचार के माध्यम से निरंतर सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश के अनुसार विश्वविद्यालय को शिक्षा व अनुसंधान की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करने की जरूरत बताई। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। इस बीच राज्यपाल ने शिमला के निकट जतोग छावनी क्षेत्र में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावी समाधान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक जागरूकता और ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2019 से 2022 तक की मांगी गई जानकारी के जवाब में ये खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित जवाब में माना है कि सरकारी अस्पतालों में इस अवधि के दौरान पुरुष मरीजों की हिस्टेक्टोमी संबंधी कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना शुरू करने में नाकाम रहे और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को घोटाले का झूठा नाम देकर कीचड़ उछाल रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं।

0: रखा गया है।
1: साढ़े तीन चार वर्षों में हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सी उपलब्धियां हमारे विभाग के द्वारा हुई है। आज जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जो आपके सर्वेक्षण होते हैं, चाहे आप नैस की बात करो, जो जयराम जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मुझे आज परामर्श दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो 21वें स्थान पे थे। आज निरंतर जो हमारी सरकार ने प्रयास किए, आज हम टॉप 5 स्टेट्स में हमारी रैंकिंग है। हमारी चाहे नैस की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, वहां पर 18वें स्थान पे थे। वहां पर भी अगर हम राज्यों की बात करेंगे, हम टॉप 3 स्टेट्स में हमें इसमें स्थान मिला है। 100% लिटरेसी हुई, आज केरला के साथ हमारी गिनती होती है।
0: रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा यदि श्वेत पत्र जारी करने की बात करती है तो उसे केंद्र की एनडीए सरकार के फैसलों पर भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
1: पत्र तो जारी करें, लेकिन साथ में भाजपा के हमारे मित्र वो भी श्वेत पत्र जारी करें जो वर्तमान की आपकी एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कटौती की गई, जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स में कैप लगा दिया गया, जीएसटी कंपनसेशन पे विराम लगा दिया गया, इसी तरह से तो जो लोन लिमिट थी उसमें भी काफी कटौती की गई है। और अगर आप तुलना करेंगे जयराम जी के कार्यकाल के दौरान की और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान की, लगभग कोई प्रतिवर्ष आपका कोई 10-12 हजार करोड़ का अंतर आपको देखने को मिलेगा।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार निर्धन व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वे आज किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के निगुलसरी में जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के तहत बीपीएल परिवारों को इंडक्शन हीटर वितरित करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र के पैसों से हो रहे बिजली सुधार कार्यों का श्रेय लेने में जुटी है। नाहन से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि सिरमौर जिला में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र की RDSS योजना के तहत 194,42,00,000 रुपए की परियोजना पर कार्य चल रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने RDSS योजना के तहत हिमाचल को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
2: जिला सिरमौर के लिए RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 194.42 करोड़ की स्कीम चल और सिरमौर जिला में जितने काम बिजली के चल उसमें 194.42 करोड़ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत ये काम हो रहा है। कांग्रेस की ओर से ये बयान दिया कि बिजली के अंदर प्रदेश सरकार के एफर्ट्स के साथ ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो ये बात बीच में नहीं कही कि ये जितनी राशि आई है ये 100% केंद्र सरकार की देन है।
0: स्टेट ओपन स्कूल के तहत इस वर्ष सितंबर में आयोजित होने वाली कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 20 जुलाई तक प्रवेश फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। किन्नौर जिला के शिपकिला से चीन व्यापार के संबंध में आज रिकांगपियो में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिपकिला से व्यापार 1 अगस्त से आरंभ होगा जो 30 नवंबर तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग पंचायत में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का किया लोकार्पण। कहा, पंचायत को हर साल 14,00,000 रुपए की होगी आय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, हिमकेयर योजना को लेकर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में हिमाचल की शिक्षा रैंकिंग हुई बेहतर। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहे बिजली सुधार कार्यों का श्रेय ले रही सुक्खू सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
4: पंचायत

0: सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है रोजगार समाचार। कार्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना अनुसार विभाग में स्टाफ नर्सों के 8 पद जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाने हैं। ये पद 40% विकलांग उम्मीदवारों के भरे जाने हैं। 3 पद एक पैर से अक्षम सेरेब्रल पैल्सी और एसिड अटैक से पीड़िता के भरे जाने हैं। 3 पद पढ़ने में अक्षम, बोलने चलने बैठने में अक्षम उम्मीदवारों के भरे जाने हैं। 2 पद एक हाथ एक पैर, लेप्रोसी और एसिड अटैक पीड़िता के भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। इन पदों को भरने हेतु शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है, उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10/2 विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण की हो, साथ ही उम्मीदवार ने ए ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा इन GNM या BSc नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान और विश्वविद्यालय से की हो। वांछनीय योग्यता इस प्रकार से, उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश की भाषा और रीति रिवाजों का भी ज्ञान होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि गैर जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 30 जुलाई 2026 और जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार विभाग के दूरभाष नंबर 2621424 पर संपर्क कर सकते हैं। शिमला का एसटीडी कोड है 0177। आपको पुनः बता दें, विभाग का दूरभाष नंबर है 2621424, शिमला का एसटीडी कोड है 0177। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्सों के 8 पद जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाने हैं। ये पद 40% विकलांग उम्मीदवारों के भरे जाने हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

विविध रंगों से सजे मधुर गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली पेशकश कैलाश खेर की आवाज में।

मिलीजुली संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं एफएम धर्मशाला के संग, और ये रहा कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे गाया है हंसराज हंस ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, रात्रि के 8:17 और 25 सेकेंड, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को गाया है फाल्गुनी पाठक और साथियों ने।

हरभजन मन मान के गाए इसी पंजाबी गीत के साथ विविध संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को। कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत सुखविंदर सिंह और एआर रहमान की आवाज में, फिल्म है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। एआर रहमान का संगीत निर्देशन है और बोल है समीर के।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम का गाया ये देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सरफरोश से।

सरफरोश फिल्म के इसी देशभक्ति गीत के साथ देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश

0: न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by a

0: experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional trust.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
4: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
3: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46.

जी श्रोताओ, संगीत में सबसे दमदार और ऊर्जावान गायकों में से एक हैं सुखविंदर सिंह। इनका जन्म 18 जुलाई 1971 को अमृतसर पंजाब में हुआ।

जी श्रोताओ, सुखविंदर सिंह अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी जैसी कई अन्य भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। बात करें उनकी उपलब्धियों की तो ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। जय हो। गीत अभी आपने सुना जिसे एआर रहमान ने संगीत दिया था। इस गीत के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। बात करें कुछ अन्य गीतों की तो दिल से फिल्म का गीत छैया छैया, रब ने बना दी जोड़ी के गीत होले होले के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो उन्हीं की आवाज़ में सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज सुखविंदर सिंह की। जी हाँ, उन्हीं की बातें हम आज कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हीं के गाए कुछ चुनिंदा नगमे आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। जी हाँ, कार्यक्रम है एक ही कलाकार। 1991 में अपना गायन करियर की इन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्हें हैदर के गीत विस्मिल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में गीत गाए और जिनमें हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित अनेक भाषाओं के गीत शामिल हैं। बात करें दिल से के गीत छैया छैया की, तो रातों रात इस गीत ने इन्हें लोकप्रिय बना दिया। ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में गिना जाता है।

जी श्रोताओ, सुखविंदर सिंह केवल एक गायक नहीं बल्कि संगीत की दुनिया के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी आवाज हर गीत में नई ऊर्जा, नई जान भर देती है। और उनकी गायकी में जोश, जुनून और आत्मा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्हीं के गाए इसी गीत के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतादी।

महेंद्रु राम और कश्मीरी राम के युगल स्वरों में ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत कौशल्या देवी की आवाज में

कौशल्या देवी का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। जी श्रोताओं, लोकगीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की धड़कन है। जिस समाज के लोकगीत जीवंत रहते हैं उसकी संस्कृति भी हमेशा जीवित रहती है।

धाम गीता दी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये लोकगीत आप सुन रहे हैं सुनील राणा की आवाज में।

निमो चौधरी का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। जी श्रोताओ, लोकगीत हमारी संस्कृति की आत्मा और हमारी पहचान का दर्पण है।

अंकुश संदल का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीतादी, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत जिसे गाया है अंजनी व्यास ने।

मंजू चिश्ती और सखियों का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए, सुनिए रवि रघुवंशी की आवाज में।

प्रदीप परदेसी। जी हाँ, इन्हीं का गाया ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अंतिम गीत लक्ष्मी पूनम और सपना की आवाज में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम धाम गीता दी यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

हीरा पन्ना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत राहुल देव बर्मन का, और बोल थे आनंद बख्शी के।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कन्यादान फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और साथियों ने। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और बोल हैं गोपाल दास नी।

जीने की राह, इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

नूरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल स्वरों में। इस गीत को संगीत बद्ध किया था खय्याम ने और बोल थे जानिसार अख्तर के। और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अभिमान से।

अभिमान फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से